0: एक एक बूंद को हमें बचाना है, तो मेरा खास आग्रह है वर्षा का बूंद बूंद पानी हम मिलकर के बचाएं।
1: जल है तो हम है, आइए घरों ऑफिसों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग तकनीक अपनाएं, रिचार्ज पिट और शाफ्ट बनवाएं, अनुपयोगी बोरवेलों को ठीक करें, जलाशयों से गाद निकालें, अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। इस बारिश आइए जुड़े कैच द रेन अभियान से।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं कनकलता। भारत और न्यूजीलैंड ने आर्थिक और रणनीतिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए रक्षा, आपदा प्रबंधन और पशुपालन सहित प्रमुख क्षेत्रों में 5 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑकलैंड में न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की। कहा, भारत और न्यूजीलैंड हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति तथा सुरक्षा को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। स्वदेशी स्टेल्थ फ्रिगेट महेंद्र गिरी आज नौसेना में शामिल होगा। गृहमंत्री अमित शाह ने बंदरगाह सुरक्षा ब्यूरो के क्रियान्वयन में हुई प्रगति की समीक्षा की, मजबूत तटीय सुरक्षा उपायों के निर्देश दिए। फीफा विश्व कप में स्पेन बेल्जियम को 2-1 से हराकर सेमीफाइनल में, आज रात तीसरे क्वार्टर फाइनल में नॉर्वे का मुकाबला इंग्लैंड से। और विंबलडन टेनिस के महिला सिंगल फाइनल में आज चेक गणराज्य की कैरोलिना मुकोवा हमवतन लिंडा नोस्कोवा के साथ खेलेंगी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के बीच आज ऑकलैंड में द्विपक्षीय वार्ता हुई। इसके बाद दोनों देशों ने रक्षा, पशुपालन एवं डेयरी, पर्यटन, खेल और आपदा प्रबंधन से जुड़े 5 महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ऑकलैंड स्थित गवर्नमेंट हाउस में औपचारिक स्वागत किया गया। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन ने उन्हें राजकीय सम्मान के साथ रिसीव किया। औपचारिक स्वागत के बाद दोनों प्रधानमंत्रियों के बीच द्विपक्षीय वार्ता हुई। इस दौरान रक्षा, पशुपालन, डेयरी, पर्यटन, खेल और आपदा प्रबंधन से जुड़े 5 समझौता ज्ञापनों का आदान प्रदान हुआ, जिससे भारत न्यूजीलैंड साझेदारी को नई गति मिली। इसके बाद दोनों प्रधानमंत्रियों ने भारत न्यूजीलैंड बिजनेस एंगेजमेंट कार्यक्रम को संबोधित किया। प्रधानमंत्री मोदी ने रिकॉर्ड कार समय में मुक्त व्यापार समझौते के संपन्न होने पर खुशी जताई और विश्वास व्यक्त किया कि वर्ष 2030 तक दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार 2 गुना हो जाएगा। उन्होंने न्यूजीलैंड के उद्योग जगत को भारत में निवेश के लिए आमंत्रित करते हुए कहा कि भारत केवल एक बड़ा बाजार ही नहीं बल्कि वैश्विक विकास का एक सशक्त लॉन्च पैड भी है। मंजू मीना, आकाशवाणी समाचार के लिए ऑकलैंड, न्यूजीलैंड।
2: वार्ता के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि 40 वर्ष बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री की न्यूजीलैंड यात्रा दोनों देशों के संबंधों में एक ऐतिहासिक पड़ाव है।
4: 40 साल के बाद भारत के प्रधानमंत्री का

0: जिलाना हुआ है और एक प्रकार से आपकी आर्थिक राजधानी में कार्यक्रम बना करके भारत और न्यूजीलैंड के संबंधों को एक नई ताकत देने का एक अवसर पैदा किया है। मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। ये हमारे संबंधों में एक ऐतिहासिक पड़ाव है जो हमारे संबंधों की नई ऊर्जा, हमारी मित्रता के नए संकल्प को दोहराने वाला है।
1: श्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों ने सामरिक साझेदारी स्थापित करने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया है जो भविष्य के सहयोग को नई दिशा देगा। प्रधानमंत्री ने भारत और न्यूजीलैंड के बीच मुक्त व्यापार समझौते को द्विपक्षीय संबंधों को नई गति देने वाला एक ऐतिहासिक कदम बताया। उन्होंने कहा कि भारत और न्यूजीलैंड हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, स्थिरता और सुरक्षा को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं।
0: लोकतांत्रिक मूल्यों के में दृढ़ विश्वास हमें नेचुरल पार्टनर बनाता है, मेड फॉर ईच अदर जैसा है ये। और दूसरी प्रकार से दो मैरिटाइम देश के रूप में हमारा करीबी सहयोग इंडो पैसिफिक को एक नई ताकत देता है और शांति के हमारे जो लक्ष्य हैं उसको अचीव करने में हमारे संबंध एक नई ऊर्जा भर सकते हैं।
1: न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की ये यात्रा दोनों देशों के संबंधों को नई ऊंचाई देगी। उन्होंने कहा कि सामरिक साझेदारी से व्यापार सहित कई क्षेत्रों में सहयोग का दायरा और बढ़ेगा।
2: Marking the first visit by an Indian Prime Minister to New Zealand in 40 years. This visit is also a significant milestone in the New Zealand-India relationship. When I visited last year, you welcomed me and my delegation with great warmth and tremendous generosity.
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भारतीय समुदाय को संबोधित करेंगे और उद्योग तथा खेल जगत की प्रमुख हस्तियों से भी मुलाकात करेंगे। स्वदेशी स्टील फ्रिगेट INS महेंद्र गिरी को आज आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में भारतीय नौसेना के पूर्वी बेड़े में शामिल किया जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस समारोह की अध्यक्षता करेंगे। ये भारत की रक्षा आत्मनिर्भरता की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि मानी जा रही है। समारोह से पहले रक्षा मंत्री ने नौसैनिकों को संबोधित करते हुए कहा कि भारत हिंद महासागर क्षेत्र में शांति और स्थिरता का प्रमुख संरक्षक है। उन्होंने कहा कि देश का 90% से अधिक व्यापार समुद्री मार्गों से होता है, इसलिए समुद्री सुरक्षा बेहद महत्वपूर्ण है।
3: हमारे व्यापार का 90% से अधिक हिस्सा समुद्री मार्ग से ही होता है। हमारे विशाल इंफ्रास्ट्रक्चर इकोनॉमिक जोन है, हमारे आईलैंड टेरिटरीज है और यह जो रीजन है और आज पहले से कहीं अधिक कॉम्प्लेक्स और अधिक चैलेंजिंग होता जा रहा है और इस रीजन में एक्स्ट्रा रीजनल पावर्स की प्रेजेंस और एक्टिविटी लगातार बढ़ रही है, जिसमें आप प्रत्यक्ष अपनी आंखों से देख रहे हैं।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
0: एक प्रकार से PM जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार देश की तटीय सुरक्षा सुदृढ़ करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। श्री शाह ने पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल के साथ पत्तन सुरक्षा ब्यूरो की स्थापना में हुई प्रगति की समीक्षा के दौरान ये बात कही। गृहमंत्री ने कहा कि पत्तन सुरक्षा का दायित्व केवल लाइसेंस प्राप्त निजी सुरक्षा एजेंसियों को सौंपा जाना चाहिए। उन्होंने वर्तमान बुनियादी ढांचे का उपयोग करते हुए पत्तन सुरक्षा प्रशिक्षण संस्थान में प्रशिक्षण शीघ्र शुरू करने का निर्देश दिया।
2: इस बैठक में केंद्रीय गृह सचिव, खुफिया ब्यूरो के निदेशक, सीमा प्रबंधन सचिव, पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय सचिव, मत्स्य पालन विभाग के सचिव, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के महानिदेशक और अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। BOPS का गठन मर्चेंट शिपिंग एक्ट 2015

0: 25 की धारा 13 के प्रावधानों के तहत एक वैधानिक निकाय के रूप में किया जा रहा है। ब्यूरो का नेतृत्व एक महानिदेशक करेंगे और यह पत्तन, पोत परिवहन एवं जलमार्ग मंत्रालय के अधीन काम करेगा। श्री शाह ने मत्स्य पालन विभाग के अधिकारियों के साथ मछली पकड़ने वाले बंदरगाहों और मछली उतारने के केंद्रों के लिए सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा भी की। अनुपम मिश्र के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज एक दिन के बिहार दौरे पर गया जी जाएंगे। इस दौरान वे बिहार लोक प्रशासन और ग्रामीण विकास संस्थान में बिहार विधानसभा सदस्यों के प्रशिक्षण कार्यक्रम के उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगे। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि हाल के तनाव के बावजूद अमेरिका और ईरान वार्ता जारी रखने पर सहमत हो गए हैं। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि ईरान ने वार्ता जारी रखने का अनुरोध किया है और अमेरिका इस पर सहमत हो गया है। अमेरिका ने ईरान से होर्मुज जलडमरू मध्य में जहाजों पर हमले रोकने की मांग की है। इन हमलों के कारण तनाव बढ़ने से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें बढ़ गई हैं। वेनेजुएला में पिछले महीने आए दो शक्तिशाली भूकंप में मरने वालों की संख्या 4,000 से अधिक हो गई है। वेनेजुएला संसद प्रमुख जॉर्ज रोड्रिगेज के अनुसार अब तक 4,118 लोगों की मौत हो चुकी है और 16,740 लोग घायल हुए हैं। वहीं हजारों लोग अब भी लापता हैं। हमारी विशेष श्रृंखला प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ के अंतर्गत लोगों को पर्यावरण के अनुकूल जीवन शैली अपनाने के लिए प्रोत्साहित करने के काम में लगे आशीष अग्रवाल से बातचीत प्रसारित की जाएगी।
2: प्लास्टिक को रिप्लेस कर दिया हमने कपड़े के बैग से, वैसे ही प्लास्टिक की बॉटल्स को रिप्लेस कर दिया मेटल की बॉटल से, टिश्यू पेपर को रिप्लेस कर दिया रुमाल वगैरह से। इन अनरीड मेल्स 2,000 रहेंगे, 5,000 रहेंगे, 10,000 रहेंगे, 100 रहेंगे, कितना बड़ा मेल है उसमें अटैचमेंट है कि नहीं है, तो सिर्फ इनबॉक्स को अगर हम लोग क्लियर रखते हैं उससे बहुत सारे एमिशन बच सकते हैं।
1: प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ। ये चर्चा आज सवेरे 9:10 पर आकाशवाणी के FM गोल्ड पर प्रसारित होगी। मौसम विभाग ने बिहार, उत्तर प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र और सिक्किम में अगले 3 दिन मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। और अब खेल खबरों के साथ हैं मुकेश कुमार।
3: स्पेन फीफा फुटबॉल विश्व कप के सेमीफाइनल में पहुंच गया है। लॉस एंजलिस में आज क्वार्टर फाइनल में स्पेन ने बेल्जियम को 2-1 से हरा दिया। स्पेन के लिए विजयी गोल मिकेल मेरिनो ने 88वें मिनट में किया। इससे पहले फ्रांस ने पहले क्वार्टर फाइनल में मोरक्को को 2-0 से हराकर सेमीफाइनल में जगह बनाई। तीसरे क्वार्टर फाइनल में आज नॉर्वे का सामना इंग्लैंड से होगा। ये मैच भारतीय समय के अनुसार रात 2:30 शुरू होगा। वहीं चौथे क्वार्टर फाइनल में कल मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना का सामना स्विट्जरलैंड से होगा। उधर विंबलडन टेनिस के महिला सिंगल्स फाइनल में आज चेक गणराज की कैरोलिना मुकोवा का सामना लिंडा नेस्कोवा से होगा। चेक गणराज की दोनों खिलाड़ी पहली बार विंबलडन फाइनल में पहुंची हैं। पुरुष सिंगल्स फाइनल में कल विश्व के नंबर एक खिलाड़ी यानिक सिनर का सामना जर्मनी के अलेक्जेंडर ज़वरेव से होगा। सिनर ने सेमीफाइनल में नोवाक जोकोविच को और ज़वरेव ने ब्रिटेन के आर्थर फेरी को हराकर फाइनल में प्रवेश किया। इस बीच लंदन के लॉर्ड्स में पहले महिला क्रिकेट टेस्ट के दूसरे दिन आज इंग्लैंड पहली पारी में कल के 21 रन पर 1 विकेट के स्कोर से आगे खेलेगा। कल का खेल समाप्त होने के समय माया बाउचियर 17 और हीथर नाइट 1 रन बनाकर क्रीज पर थी। इससे पहले भारत ने पहली पारी में 285 रन बनाए थे। स्मृति मानधाना ने 83 रन, कप्तान हरमनप्रीत कौर और दीप्ति शर्मा ने अर्धशतक बनाए।
1: ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
4: धन्यवाद कनक। पेट्रोल में इथेनॉल मिश्रण से संबंधित खबर आज अखबारों के पहले पन्ने पर है। हिंदुस्तान ने सरकार का बयान दिया है, E20 से माइलेज थोड़ा घटेगा मगर इंजन सुरक्षित। जनसत्ता लिखता है, पेट्रोलियम मंत्रालय ने दी जानकारी, इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल से 5% कम हो जाएगी औसत। पत्र ने संपादकीय में लिखा है, ये अच्छा हुआ कि अंततः सरकार की ओर से ये स्पष्ट किया गया कि E20 ईंधन से गाड़ियों का माइलेज भले ही कम होता हो लेकिन ये ऊर्जा सुरक्षा और स्वच्छ पर्यावरण के लिए उपयोगी होने के साथ ही किसानों के लिए लाभकारी भी है। अल्कोहल युक्त दवाओं पर नए नियम लागू होने पर नवभारत टाइम्स ने नहीं मिलेगी छूट से लिखा है, अल्कोहल 12% से अधिक तो डॉक्टर की पर्ची से ही दवा, सरकार ने कहा हो रहा था गलत इस्तेमाल। सर्वोच्च न्यायालय में सुनवाई के दौरान बदतमीजी करने पर याचिकाकर्ता

0: को कक्ष से बाहर निकाले जाने की खबर दैनिक जागरण, नवभारत टाइम्स और हिंदुस्तान में है। दिल्ली में भूजल में तय सीमा से अधिक यूरेनियम, एनजीटी सख्त, अमर उजाला की खबर है। वंदे मातरम जन गण मन को लेकर नई गाइडलाइन पर पंजाब केसरी लिखता है, सभी राज्यों और केंद्रीय मंत्रालयों को निर्देश जारी कर दिए गए हैं और पहले वंदे मातरम तथा उसके बाद जन गण मन गाया जाएगा। फीफा विश्व कप की खबर देते हुए जनसत्ता ने लिखा है, गोल्डन बूट की दौड़ में अब एम्बाप्पे आए मेसी के बराबर। अमर उजाला ने अमरनाथ यात्रा पर लिखा है, प्रकृति में दखल से जल्दी अंतर्ध्यान हुए बाबा बर्फानी। दैनिक भास्कर ने अपने खास आलेख में लिखा है, अतीत आज से बेहतर ये सच नहीं, बीते कल की चाहत में आज गुम न होने दें, यादों से ऊर्जा लें, भविष्य की चुनौतियों से लड़ सकेंगे।
1: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और न्यूजीलैंड ने आर्थिक तथा रणनीतिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए रक्षा, आपदा प्रबंधन और पशुपालन सहित प्रमुख क्षेत्रों में 5 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑकलैंड में न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की। कहा, भारत और न्यूजीलैंड हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति और सुरक्षा को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। स्वदेशी स्टील फ्रिगेट महेंद्र गिरी आज नौसेना में शामिल होगा। फीफा विश्व कप में स्पेन बेल्जियम को 2-1 से हराकर सेमीफाइनल में पहुंचा। आज रात तीसरे क्वार्टर फाइनल में नॉर्वे का मुकाबला इंग्लैंड से होगा। और विंबलडन टेनिस के महिला सिंगल्स फाइनल में आज चेक गणराज्य की कैरोलिना मुकोवा अपने ही देश की लिंडा नुस्कोवा से खेलेंगी। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I'm Anuja Kumar. The headlines. India and New Zealand signed 5 MOUs in key areas including defense, disaster management and animal husbandry to boost economic and strategic cooperation. Prime Minister Narendra Modi holds delegation-level talks with New Zealand Prime Minister Christopher Luxon in Auckland, says India and New Zealand can play important role in strengthening peace and security in Indo-Pacific region. Indian Navy to commission indigenous stealth frigate Mahendragiri in Vishakhapatnam today. Home Minister Amit Shah reviews progress in rollout of Bureau of Port Security, directs stronger coastal security measures. In FIFA World Cup, Spain books spot in semi-finals, defeating Belgium 2-1, Norway to face England in third quarter-final tonight. And in Wimbledon tennis, Czechia Karolina Muchová to face compatriot Linda Noskova in women's singles final today. And now the news in detail. India and New Zealand today signed 5 key memorandums of understanding, MOUs, covering defence, animal husbandry and dairy, tourism, sports and disaster management, marking a new chapter in bilateral ties between the two nations. The deals were inked following delegation-level talks between Prime Minister Narendra Modi and his New Zealand counterpart, Christopher Luxon, in Auckland. We have more from our correspondent.
3: The two countries signed a memorandum of arrangement between the Ministry of Defence and the New Zealand Defence Force to enhance maritime cooperation aimed at strengthening security in the Indo-Pacific region. The agreement on animal husbandry and dairy will promote research, innovation and exchange of best practices. The tourism pact is expected to boost visitor exchanges and strengthen cooperation in the travel sector. Both sides also adopted a joint action plan on sport to deepen collaboration in sports development and athlete exchanges. An MOU on disaster management will enhance cooperation in disaster preparedness, emergency response and resilience. The 5 agreements reflect the growing India-New Zealand partnership and the shared commitment to expand cooperation across strategic, economic and people-to-people sectors. With Manju Meena's report from Auckland, this is Jigyasa Pandey for Akashwani News.
2: Earlier, speaking during delegation-level talks, Prime Minister Modi said that his visit to New Zealand marks a historic milestone in bilateral relations and will give a fresh momentum to ties between the two countries. Prime Minister Modi said India and New Zealand can play an important role in strengthening peace, stability and security in the Indo-Pacific region.
4: लोकतांत्रिक मूल्यों के में दृढ़ विश्वास हमें नेचुरल पार्टनर बनाता है, मेड फॉर ईच अदर जैसा है ये। और दूसरी प्रकार से दो मैरिटाइम देश के रूप में हमारा करीबी सहयोग इंडो पैसिफिक को एक नई ताकत देता है और शांति के हमारे जो लक्ष्य

आई जस्ट होप दैट ये जो प्लेलिस्ट है वो भी नहीं भूलेगी, क्योंकि गाने ही ऐसे हैं, मौसम भी ऐसा है. राइट अक्रॉस द कंट्री देर इज मॉनसून मैजिक. ऑफकोर्स एट सम प्लेसेस देर इज हैवक, देर इज अ लॉट ऑफ डिस्ट्रक्शन, एंड माई हार्ट गोज आउट टू दोज हू आर सफरिंग ऑन अकाउंट ऑफ रेन. वाइल वी डू दैट ऑन आकाशवाणी ऑन द शो FM रेनबो 101.3, देर इज द अदर साइड ऑफ रेन दैट वी आर सेलिब्रेटिंग, नेचर सॉन्ग्स एंड बॉलीवुड एंड बरसात. My name is Vasanthi Hariprakash. It's almost quarter past 12 and I'm in the studios of Akashwani, but I know I'm reaching out to you, to all those of you who are tuned in from God knows which towns and cities across the world. There is Abhay the architect who's tuned in from Dubai and is thanking me. I'm so glad that you're able to use the app well. There is also Deepa Dasharathi who says that, hi Vasanthi, I'm absolutely thrilled to hear your voice back on air. I've been a huge fan for a long time. Thank you so much, Deepa. It's always a pleasure to be back on radio. You know, I am thankful to Akashwani for this invitation to some of us who used to do daily shows on radio, because this is such an intimate, magical medium to reach out. It almost feels like I am with you in your living room or wherever you're on a drive listening to this show. बहरहाल ये जो गाना आपने सुना पहले रफी साहब की आवाज में, जिंदगी भर नहीं भूलेगी बरसात की रात, आई मीन द मैजिक ऑफ द लिरिक्स कुड हैव जस्ट कम ओनली फ्रॉम माई फेवरेट लिरिसिस्ट साहिर लुधियानवी साहब. वेल, वी विल लिसन and learn at the same time. That is the whole idea of the Bollywood and Barsaat quiz. I had asked you one question, which is to say ki ye kaun sa gana tha jahan par hero apna car repair kar rahe hain, aur ye jo hai gana abhi jo main aapke liye play karne wali hu, that plays out, it's almost like a classic. And aap mein se kai logon ne ye sahi jawab bhi diya hai. Bindu Prakash, Harshavardhini Prakash, and also Rajesh, some of you have not mentioned your names. Please remember to put out your name and also the city from where you're tuned in. 94809-01013 is a number you've got to save up. Now, this is from Chalti Ka Naam Gaadi and the song that made the romance blossom between Kishore Kumar and Madhubala. That's a song that I'm going to be playing for you. In fact, इसी फिल्म में और एक गाना भी तो था, पांच रुपया बारा आना, रिमेंबर दैट वन. नाउ दैट वॉज एग्जैक्टली द 5 रुपीज 75 पैसा दैट वॉज टू बी यू नो एक्सट्रैक्टेड, और राधा किशोर कुमार ओड टू हिज कॉलेज कैंटीन इन इंदौर, और उसी का एक गाना भी बन गया. लेकिन ये जो गाना मैं अभी आपको सुनाने वाली हूं, ये तो खैर एक बहुत ही प्राइज्ड सॉन्ग है. एंड बिफोर आई प्ले दिस, आई एम गोइंग टू बी आस्किंग यू द अम्ब्रेला रेन सॉन्ग विच इज सुपर फेमस. यू हैव गॉट टू message me on the same digits while I play you this one.

0: मोदी की गारंटी मतलब गारंटी पूरा होने की गारंटी। साथियों, मैं आज आपसे एक आग्रह भी करना चाहता हूं, करूं? हां कहने में क्या जाता है। हमने कुछ समय पहले हमारी इंडियन डायस्पोरा के बच्चों के लिए एक नया प्रयोग किया है। हमारे बच्चे भारत को समझे और भारत की विविधता की बात दुनिया तक पहुंचे, इसके लिए हमने भारत को जानो क्विज इसकी शुरुआत की है। अभी इसका कर्टन रेजर ही हुआ है और हमारे साथियों ने इसमें ही जिस एनर्जी से पार्टिसिपेट किया है, मैं वही देखकर बहुत प्रभावित हूं।
1: Defense Minister Rajnath Singh has said today that India is building a strong, self-reliant and future-ready defense force by strengthening both conventional defense capabilities and advanced technologies. He said future wars may employ artificial intelligence and other emerging technologies, but they will ultimately be won by national resolve, courageous soldiers and capable military power. The defense minister said technology and conventional military strengths complement each other and India is committed to excelling in both under the vision of Atmanirbhar Bharat. Mr. Rajnath Singh was addressing the commissioning ceremony of the INS Mahendragiri, the sixth Project 17A indigenous stealth frigate into the Eastern Fleet at Visakhapatnam today. He said the commissioning marks another milestone in strengthening India's maritime power and indigenous defense capability.
2: मल्टी फंक्शन रडार के साथ
3: इट हैज अ लॉन्ग रेंज सर्फेस टू एयर मिसाइल कॉम्बिनेशन विद अ मल्टी फंक्शन रडार दैट कैन डिटेक्ट एंड डिस्ट्रॉय एनी थ्रेट कमिंग फ्रॉम द स्काई फ्रॉम अ डिस्टेंस एंड इट हैज एन इंडिजीनियस रॉकेट लॉन्चर टॉर्पेडो लॉन्चर्स एन इंटीग्रेटेड एंटी सबमरीन डिफेंस सिस्टम एन इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट एंड अ क्लोज इन वेपन सिस्टम टू दीज ऑल थिंग्स मेक INS महेंद्रगिरी एज इनविंसिबल एंड स्ट्रॉन्ग एज द महेंद्रगिरी माउंटेन।

0: is correctly, families become healthier and happier, reinforces the need to improve maternal and child health through informed reproductive choices and quality family planning services. On to sports. India will face England in the fifth and final T20 international of the series today at Utilita Bowl in Southampton. The match is scheduled to begin at 7 p.m. Indian Standard Time. England has already clinched the series with a 3-0 lead, while India will be aiming to register a consolation victory before the teams move on to the ODI series. In the FIFA World Cup, Norway will take on England, while defending champions Argentina face Switzerland tonight in the quarterfinals to determine the remaining semi-finalists. Spain and France have already booked their places in the last four. Spain secured a thrilling 2-1 victory over Belgium to advance, while France progressed with a comfortable 2-0 win over Morocco. The winners of tonight's quarterfinals will complete the semi-final lineup of the FIFA World Cup 2026. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. India and New Zealand elevates ties to strategic partnership set to double bilateral trade to 35,000 crore rupees by 2030. Prime Minister Narendra Modi says Indian community across New Zealand is a vital part of the shared journey among two nations, addresses Indian diaspora in Auckland. Defence Minister Rajnath Singh commissions indigenous stealth frigate INS Mahendra Giri, says India building a strong, self-reliant and future-ready defence force. BRICS Ministerial Declaration 2026 adopted to strengthen technological and innovation-driven cooperation in transport sector. Typhoon Vavi forces flight cancellations and school closures in Japan and Taiwan. India to face England in fifth and final T20 international in Southampton, England this evening. And in FIFA World Cup, Norway to take on England in Argentina to face Switzerland in quarterfinals tonight. For details of these stories and more, log on to our website www.newsonair.gov.in and News on AIR app. And with that, we end the midday news.
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। भारत और न्यूजीलैंड ने अपने संबंधों को रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ाया। 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना कर 35,000 करोड़ रुपए तक पहुंचाने का लक्ष्य। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑकलैंड में भारतीय प्रवासी समुदाय को संबोधित किया, कहा न्यूजीलैंड में भारतीय समुदाय दोनों देशों के बीच साझा सफर का एक अहम हिस्सा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने विशाखापट्टनम में स्वदेशी स्टील्थ फ्रिगेट INS महेंद्र गिरी का जलावतरण किया, कहा भारत एक मजबूत, आत्मनिर्भर और भविष्य के लिए तैयार रक्षा बल का निर्माण कर रहा है। परिवहन क्षेत्र में तकनीकी और नवाचार आधारित सहयोग मजबूत करने के लिए ब्रिक्स मंत्री स्तरीय घोषणा 2026 को अपनाया गया। बावी तूफान के कारण जापान और ताइवान में उड़ानें रद्द और स्कूल बंद। भारत और इंग्लैंड के बीच पांचवा और अंतिम T20 क्रिकेट मैच आज शाम साउथहैम्पटन में खेला जाएगा और फीफा फुटबॉल विश्व कप के क्वार्टर फाइनल में नॉर्वे का मुकाबला इंग्लैंड से और अर्जेंटीना का सामना स्विट्जरलैंड से। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ाने पर सहमत हुए हैं। 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना कर 35,000 करोड़ रुपए तक पहुंचाने का लक्ष्य है। ऑकलैंड में दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय वार्ता के बाद विदेश मंत्रालय में पूर्वी देशों के प्रभारी सचिव रुद्रेंद्र टंडन ने बताया कि आगामी चार वर्षों में साझा रूप से काम करने के लिए भारत न्यूजीलैंड रणनीतिक साझेदारी 2030 तक की रूपरेखा को भी मंजूरी दी गई है। इसका उद्देश्य द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करना है।
2: दोनों देशों के संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक ले जाने का निर्णय ये दर्शाता है कि हम अपने रिश्तों के सभी क्षेत्रों में संबंध मजबूत कर रहे हैं, विशेष रूप से रक्षा तथा सुरक्षा के क्षेत्र में और राजनीतिक स्तर पर।
1: इससे पहले दोनों नेताओं के बीच हुई द्विपक्षीय वार्ता के बाद रक्षा, पशुपालन और डेयरी, पर्यटन, खेल तथा आपदा प्रबंधन से जुड़े 5 महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि

0: ये दोनों देशों के संबंधों में एक ऐतिहासिक पड़ाव है। उन्होंने कहा कि दोनों देशों ने सामरिक साझेदारी स्थापित करने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया है जो भविष्य के सहयोग को नई दिशा देगा।
1: आज हमने इंडो पैसिफिक में मैरिटाइम कोऑपरेशन के लिए एक फ्रेमवर्क पर सहमति बनाई है। बायलेटरल नेवल एक्सरसाइज, लॉजिस्टिक सपोर्ट और हाइड्रोग्राफी में सहयोग से हमारा आपसी तालमेल बढ़ेगा।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देश आतंकवाद के खिलाफ मिलकर काम करने के लिए भी सहमत हुए हैं।
1: वैश्विक मंच पर भी भारत और न्यूजीलैंड भरोसेमंद साझेदार और करीबी मित्र है। हमारा मानना है कि वर्तमान समय की चुनौतियों का सामना करने के लिए यूएन सहित अन्य वैश्विक संस्थानों में रिफॉर्म आवश्यक है। आतंकवाद के विषय पर कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ाने के लिए आज हमने ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप का गठन किया है।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि इस वर्ष दोनों देश खेल संबंधों की 100वीं वर्षगांठ मना रहे हैं।
1: 100 साल पहले मेजर ध्यानचंद के नेतृत्व में हॉकी टीम ने यहां आकर जो इतिहास रचा था वह हमारी खेल साझेदारी को आज भी प्रेरित कर रहा है। इस उपलक्ष्य पर हम दोनों देशों में कई स्पोर्ट्स इवेंट्स आयोजित कर रहे हैं। क्रिकेट के साथ साथ अन्य खेलों में भी सहयोग बढ़ाने के लिए हमने स्पोर्ट्स ज्वाइंट एक्शन प्लान बनाया है।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि न्यूजीलैंड में भारतीय समुदाय दोनों देशों के बीच मजबूत होते संबंधों का महत्वपूर्ण आधार है। ऑकलैंड में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि भारत और न्यूजीलैंड के संबंध साझा विरासत, स्थायी मित्रता, समान लोकतांत्रिक मूल्यों और उज्ज्वल भविष्य के साझा संकल्प पर आधारित हैं।
1: हमने न्यूजीलैंड से भी बहुत कुछ सीखा है और अब भी सीख रहे हैं। न्यूजीलैंड दुनिया का वो देश है जिसने सबसे पहले महिलाओं को वोटिंग का राइट दिया था। भारत भी आज विमेन लेड डेवलपमेंट के मंत्र के साथ महिलाओं के लिए संभावनाओं के नए द्वार खोल रहा है।
0: श्री मोदी ने कहा कि ऑकलैंड से वेलिंगटन और क्राइस्टचर्च से क्वींसटाउन तक भारतीय समुदाय ने दोनों देशों के संबंधों को मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।
1: न्यूजीलैंड वो जगह है जहां निखिल रविशंकर एयर न्यूजीलैंड के सीईओ बन सकते हैं, जहां आनंद सत्यानंद गवर्नर जनरल बन सकते हैं, जहां क्रिकेट टीम में रचिन रविंद्र, कहीं बॉम्बे हिल्स है, कहीं कोरोमंडल है, ऐसे कितने ही नाम हैं। यहां रहते रहते आप भी पूरे के पूरे कीवी हो गए हैं।
0: इस अवसर पर न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन ने कहा कि दोनों देशों के बीच रणनीतिक और आर्थिक साझेदारी लगातार मजबूत हो रही है। उन्होंने कहा कि मुक्त व्यापार समझौते से न्यूजीलैंड के निर्यातकों को भारत के विशाल बाजार तक पहुंच मिलेगी और न्यूजीलैंड में भारतीय कारोबार के लिए नए अवसर खुलेंगे। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज विशाखापट्टनम में स्वदेशी स्टील्थ फ्रिगेट आईएनएस महेंद्र गिरी को नौसेना के पूर्वी बेड़े में शामिल किया। परियोजना 17 एकाई युद्धपोत भारत की बढ़ती समुद्री शक्ति और स्वदेशी रक्षा क्षमता का परिचायक है। श्री सिंह ने कहा कि भारत पारंपरिक रक्षा क्षमताओं और उन्नत प्रौद्योगिकियों को सुदृढ़ करके एक मजबूत, आत्मनिर्भर और भविष्य के लिए तैयार रक्षा बल का निर्माण कर रहा है। श्री सिंह ने कहा कि आईएनएस महेंद्र गिरी में 75% से अधिक स्वदेशी घटकों का इस्तेमाल हुआ है। उन्होंने कहा कि ये युद्धपोत अत्याधुनिक स्वदेशी हथियारों से सुसज्जित है। इससे हिंद महासागर में भारत की समुद्री ताकत और बढ़ेगी।
2: INS Mahendragiri में मल्टी फंक्शन राडार के साथ लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल्स का कॉम्बिनेशन है जो आकाश से आने वाले किसी भी खतरे को दूर से ही पहचान कर नष्ट कर सकते हैं और इसमें इंडिजिनस रॉकेट लॉन्चर है टारपीडो लॉन्चर्स है एक इंटीग्रेटेड एंटी सबमरीन डिफेंस सिस्टम है इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सूट है।

0: एक्सप्लोजन वेपन सिस्टम भी है। ये तमाम चीजें आईएनएस महेंद्रगिरी को महेंद्रगिरी पर्वत के समान ही अभेद और मजबूत बनाती हैं।
1: सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने आज महाराष्ट्र के नागपुर में ब्रिक्स देशों के परिवहन मंत्रियों की तीसरी बैठक की अध्यक्षता की। श्री गडकरी ने बताया कि बैठक में वैकल्पिक जैव ईंधन तथा प्रदूषण मुक्त प्रौद्योगिकियों के माध्यम से सड़क, रेल, विमानन और जल परिवहन को कार्बन न्यूट्रल बनाने के उपायों पर चर्चा हुई। उन्होंने बताया कि सहयोग को और मजबूत करने के लिए ब्रिक्स मंत्री स्तरीय घोषणा 2026 अपनाई गई है। बैठक में ब्राजील, चीन, मिश्र, इंडोनेशिया, ईरान, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, इथियोपिया और संयुक्त अरब अमीरात के परिवहन मंत्रियों ने अपने विचार साझा किए। भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता के अंतर्गत दो दिन की ये बैठक आज से नागपुर में शुरू हुई। गृह मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में जय प्रकाश नारायण सार्वजनिक पुस्तकालय का शुभारंभ किया। श्री शाह ने युवाओं से पुस्तकालयों में जाने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि पुस्तकें व्यक्तित्व निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। श्री शाह ने कहा कि महान क्रांतिकारी और विचारक जय प्रकाश नारायण ने देश के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।
2: किशोरों ने और युवाओं ने अपने रुचि के विषय छान लेने चाहिए और सुने सुनाए ज्ञान की बगर हमारे रुचि के विषय में जिन्होंने पूरा जीवन खपा दिया है, जिन्होंने पूरा जीवन लगा दिया है, ऐसे लोगों ने जो अपने अनुभव, अपने विचार, अपना चिंतन और चिंतन की व्यवहारिता जो पुस्तकों में अंकित की है उसको पढ़ना चाहिए। ये बहुत बड़ा मौका है दिल्ली के युवाओं के लिए कि फ्री ऑफ कॉस्ट 32,000 पुस्तक और 1 करोड़ ई बुक का एक्सेस है।
1: रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि हैदराबाद को प्रमुख हाई स्पीड रेल हब के रूप में विकसित किया जाएगा। प्रस्तावित बुलेट ट्रेन कॉरिडोर हैदराबाद को पुणे, चेन्नई और बेंगलुरु से जोड़ेगा। हैदराबाद में श्री वैष्णव ने कहा कि हाई स्पीड रेल नेटवर्क से यात्रा में लगने वाले समय में कमी आएगी और दक्षिण भारत में रेल संपर्क मजबूत होगा। स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा है कि स्वैच्छिक परिवार नियोजन, जागरूक निर्णय और स्वस्थ परिवार समावेशी तथा सतत विकास की मजबूत नींव है। विश्व जनसंख्या दिवस पर उन्होंने कहा कि इस वर्ष का विषय मां और बच्चे के कल्याण के लिए गर्भधारण के बीच स्वस्थ अंतराल और नियोजित पितृत्व है। उन्होंने कहा कि अभियान का नारा जब बच्चों में हो सही अंतराल, परिवार बने स्वस्थ और खुशहाल, गुणवत्तापूर्ण परिवार नियोजन सेवाओं तथा जागरूक प्रजनन संबंधी निर्णयों के महत्व को दर्शाता है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। जापान के दक्षिणी द्वीपों में आज तूफान बावी के टकराने की खबर है। इस दौरान द्वीपों में तेज हवाएं चली और मूसलाधार बारिश हुई। लगभग 144 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार वाली हवाओं के साथ तूफान बावी के कल तड़के चीन के झेजियांग प्रांत में टकराने का अनुमान है। इस तूफान के कारण जापान के ओकिनावा प्रांत में 200 से अधिक उड़ानें रद्द की गई। ताइवान में स्कूल और सरकारी कार्यालय भी बंद रहे। इस बीच चीन ने भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने अगले 4 से 5 दिन तक देश के उत्तरी और पूर्वी हिस्सों में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में मौसम विभाग के वैज्ञानिक डॉक्टर नरेश ने बताया कि अल नीनो के कारण देश में मॉनसून की बारिश सामान्य से कम हुई है।
3: आज के लिए हमारा असम मेघालय के लिए रेड अलर्ट भी है, वहाँ हम 20 सेंटीमीटर से ज्यादा रेनफॉल अनुमान लगा रहे हैं। ईस्ट उत्तर प्रदेश, बिहार, सब हिमालय बंगाल, सिक्किम, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में जो रेनफॉल एक्टिविटी है आने वाले 4 से 5 दिन कंटिन्यू रहेगी और नॉर्थ पंजाब, नॉर्थ हरियाणा में आज हैवी रेनफॉल हो सकती है। अगर आप NCR दिल्ली की बात करें, बाई इवनिंग और लेट इवनिंग हल्का फुल्का रेनफॉल हो सकता है।
1: सिक्किम एक बार फिर देश का सबसे समृद्ध राज्य बनकर उभरा है। प्रति व्यक्ति आय के नवीनतम विश्लेषण के अनुसार वित्त वर्ष 2024-25 में राज्य की प्रति व्यक्ति आय 6,46,000 रूपये से अधिक रही। ये राष्ट्रीय औसत से लगभग 3 गुना है। देश की कुल आबादी में सिक्किम की हिस्सेदारी केवल 0.05% है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
4: सिक्किम एक बार फिर भारत का सबसे समृद्ध राज्य प्रति व्यक्ति आय के आधार पर घोषित हुआ है। बिजनेस स्टैंडर्ड की कल प्रकाशित रिपोर्ट

0: के अनुसार सिक्किम के एक औसत निवासी की आय बिहार के एक औसत निवासी की तुलना में लगभग 10 गुना ज्यादा है। पिछले 10 वर्षों से शीर्ष 4 स्थानों पर सिक्किम, गोवा, दिल्ली और चंडीगढ़, जबकि सबसे निचले स्थानों पर बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड और मणिपुर लगातार बने हुए है। मानव श्रोतिम शर्मा के साथ मोइनाक चैटर्जी, आकाशवाणी समाचार, गैंगटॉक।
1: भारत और इंग्लैंड के बीच 5 T20 क्रिकेट मैचों की श्रृंखला का अंतिम मुकाबला आज शाम 7 बजे साउथहैम्पटन में खेला जाएगा। श्रृंखला में इंग्लैंड ने 3-0 की अजेय बढ़त बना ली है। लंदन के लॉर्ड्स में भारत के साथ पहले महिला क्रिकेट टेस्ट के दूसरे दिन आज इंग्लैंड पहली पारी में 1 विकेट पर 21 रन से आगे खेलेगा। माइया बाउचियर 17 और हीथर नाइट 1 रन बनाकर क्रीज पर हैं। इससे पहले कल भारतीय टीम ने पहली पारी में 285 रन बनाए। स्मृति मंधाना ने 83, कप्तान हरमनप्रीत कौर ने 58 और दीप्ति शर्मा ने 57 रन बनाए। फीफा फुटबॉल विश्व कप के तीसरे क्वार्टर फाइनल में आज देर रात 2:30 बजे नॉर्वे का मुकाबला इंग्लैंड से होगा। अंतिम क्वार्टर फाइनल में कल सुबह 6:30 बजे वर्तमान चैंपियन अर्जेंटीना और स्विट्जरलैंड आमने सामने होंगे। इससे पहले स्पेन और फ्रांस सेमीफाइनल में पहुंच चुके हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और न्यूजीलैंड ने अपने संबंधों को रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ाया। 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना कर 35,000 करोड़ रुपए तक पहुंचाने का लक्ष्य। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑकलैंड में भारतीय प्रवासी समुदाय को संबोधित किया। कहा, न्यूजीलैंड में भारतीय समुदाय दोनों देशों के बीच साझा सफर का एक अहम हिस्सा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने विशाखापट्टनम में स्वदेशी स्टील्थ फ्रिगेट INS महेंद्र गिरी का जलावतरण किया। कहा, भारत एक मजबूत, आत्मनिर्भर और भविष्य के लिए तैयार रक्षा बल का निर्माण कर रहा है। परिवहन क्षेत्र में तकनीकी और नवाचार आधारित सहयोग मजबूत करने के लिए ब्रिक्स मंत्री स्तरीय घोषणा पत्र 2026 को अपनाया गया। और भारत तथा इंग्लैंड के बीच 5वां और अंतिम T20 क्रिकेट मैच आज शाम साउथहैम्पटन में। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्रमोदिनः कथनम्। न्यूजीलैंड देशे निवसता भारतीय समुदायेन द्वयोः राष्ट्रयोः विकासयात्रायाम् एकः महत्वपूर्णो भागः ऊढः। ऑकलैंड नगरे विशालं भारतीय प्रवासी समुदायं च संबोधितवान् असौ। रक्षामन्त्रिणा राजनाथ सिंहेन स्वदेशी तन्त्रेण निर्मितस्य आईएनएस महेन्द्रगिरी युद्धपोतस्य विधिवत् जलावतरणं विधापितम्। संसूचितं च यत् भारतम् एकं सुदृढं आत्मनिर्भरं भविष्योन्मुखं च रक्षाबलं निर्माति। परिवहनक्षेत्रे प्रौद्योगिकी नवोन्मेष संचालित सहयोगं सुदृढं विधातुं ऐतिहासिकं ब्रिक्स मंत्री घोषणापत्रं सर्वसम्मत्या अंगीकृतम्। बावी चक्रवातस्य कारणात् जापान तैवानयोः विमानयात्राः निरस्तीकृताः, शैक्षणिकाः संस्थाः च स्थगिताः। भारत इंग्लैंड देशयोः मध्ये पञ्चमान्तिम च T20 अन्ताराष्ट्रिय क्रिकेट क्रीडा अद्य सायं साउथैम्प्टन नगरे आयोजयिष्यते। अपि च फीफा विश्व चषक पाद कन्दुक प्रतिस्पर्धायाः अन्तिम उपान्त्य स्थानानां निश्चयार्थम् अद्य रात्रौ प्रागुपान्त्य चरणे नॉर्वे इंग्लैंड दलयोर अथ अर्जेंटीना स्विट्जरलैंड देशयोर मध्ये स्पर्धा भविता। अथ वार्ताः विशदीकृत्य। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी स्वस्य ऐतिहासिकीं द्विदिवसीयां न्यूजीलैंड यात्रां सम्पाद्य अद्य भारताय प्रस्थितवान्। विगत चतुर्दशकेभ्यः अपि अधिक समयांतराले कस्यचित् भारतीय प्रधानमन्त्रिणः इयं प्रथमा न्यूजीलैंड यात्रा आसीत्, या द्वयोः देशयोः पारस्परिक सम्बन्धान् सुदृढीकर्तुं महत्वपूर्णां भूमिकां निर्व्यूढवती। तत्र तावत् अद्य प्रधानमन्त्री मोदी सहैव न्यूजीलैंड देशस्य प्रधानमन्त्री क्रिस्टोफर लेक्सन इत्येतौ ऑकलैंड नगरे द्विपाक्षिक वार्तानन्तरं उभयोः देशयोः सम्बन्धान् सामरिक सहयोगित्वेन रूपान्तरितवन्तौ। अनेनैव सह त्रिंशदधिक द्विसहस्र तम वर्षं यावत् उभय देशयोः वार्षिक द्विपक्षीय व्यापारं द्विगुणीकृत्य 35,000,000,000,000,000 विधातुं पञ्चवर्षीयं लक्ष्यं निर्धारितवन्तौ। शिष्टमण्डलस्तरीय मन्त्रणायां प्रधानमन्त्रिणा गदितं यत् स्वकीयः अयं न्यूजीलैंड प्रवासः द्विपाक्षिक सम्बन्धेषु केनचन ऐतिहासिक कीर्तिस्तम्भत्वेन सेत्स्यति। उभाभ्यां नेतृभ्यां प्रतिपादितं यत् हिन्द प्रशांत क्षेत्रे शान्तिं स्थिरतां सुरक्षां च सुदृढीकर्तुं भारत न्यूजीलैंड देशौ प्रमुखां भूमिकां निर्वोढुं शक्नुतः। उभय देशयोः मध्ये सम्पन्नस्य मुक्त व्यापार सहभागित्वस्य प्रशंसा कुर्वता श्रीमोदिना न्यूजीलैंड देशस्य अक्षिप्र प्रयासाः श्लाघिताः। सहैव तत्रत्य प्रधानमन्त्रिणः लेक्सन वर्यस्य कुशल नेतृत्वाय च धन्यवादः प्रकटितः।
1: हमने भारत न्यूजीलैंड संबंधों को स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के स्तर पर ले जाने का ऐतिहासिक निर्णय लिया है। इसके अंतर्गत हम हर क्षेत्र में स्पष्ट लक्ष्यों और ठोस परिणामों के साथ आगे बढ़ेंगे। इस वर्ष हमने रिकॉर्ड समय में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया। इस उपलब्धि से दोनों देशों के उद्योगों, किसानों और युवाओं के लिए नए द्वार खुलेंगे। हमें ट्रेड के साथ साथ ट्रस्ट, टेक्नोलॉजी और टैलेंट का ब्लूप्रिंट हम तैयार कर रहे हैं।
0: अत्रावसरे न्यूजीलैंड प्रधानमन्त्रिणा आधिकारिक रूपेण घोषितं यत् इयं प्रस्ताविता सामरिक सहभागिता प्रमुखाणां क्षेत्राणां विकासार्थं सहैव पारस्परिक सहयोगस्य विस्ताराय च कञ्चन व्यापकं तन्त्रं प्रदास्यति। संस्कृतवार्तायाः संस्करणमिदं इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ न्यूज ऑन एआईआर चलदूरभाषीय तन्त्रांशे अपि समुपलब्धो भविष्यति। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अद्य न्यूजीलैंड देशस्य ऑकलैंड नगरे आयोजिते एकस्मिन् प्रवासी भारतीय समुदायस्य कार्यक्रमे

0: समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी न्यूजीलैंड की ऐतिहासिक यात्रा संपन्न करने के बाद स्वदेश रवाना। कहा, दोनों देशों के बीच व्यापार समझौते से भारत विकसित राष्ट्र बनने की ओर तेजी से बढ़ेगा। वियतनाम में नाव दुर्घटना में 15 भारतीयों की मौत। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने शोक व्यक्त किया। पश्चिम बंगाल सरकार ने समान नागरिक संहिता के मसौदा विधेयक की जांच के लिए सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में 9 सदस्यीय समिति का गठन किया। मौसम विभाग के अनुसार अगले 4 से 5 दिनों तक देश के उत्तरी और पूर्वी हिस्सों में तेज बारिश का अनुमान। फीफा फुटबॉल विश्व कप में नॉर्वे और इंग्लैंड तथा मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना और स्विट्जरलैंड के बीच क्वार्टर फाइनल मुकाबला। और तीरंदाजी विश्व कप के चौथे चरण में भारतीय महिला कंपाउंड टीम ने रजत पदक जीता। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की यात्रा पूरी कर स्वदेश रवाना हो गए हैं। न्यूजीलैंड से स्वदेश लौटते हुए श्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों के सामने अवसरों की अपार संभावनाएं हैं और वे अपनी साझेदारी को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी ऐतिहासिक 2 दिवसीय न्यूजीलैंड यात्रा पूरी कर भारत के लिए रवाना हो गए हैं। 4 दशकों से अधिक समय बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री की यह पहली द्विपक्षीय यात्रा रही जिसने दोनों देशों के संबंधों को नई गति दी। यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी और न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के बीच व्यापक वार्ता हुई। दोनों नेताओं की मौजूदगी में रक्षा, पर्यटन, खेल, आपदा प्रबंधन तथा डेयरी एवं पशुपालन सहित 5 महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। प्रधानमंत्री लक्सन ने भारत को न्यूजीलैंड का विश्वसनीय मित्र बताते हुए भारतीय समुदाय

0: नायक के योगदान और प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व की सराहना की। प्रधानमंत्री मोदी ने प्रधानमंत्री लक्सन के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि यह यात्रा भारत न्यूजीलैंड संबंधों में नए अध्याय की शुरुआत है।
1: भारत और न्यूजीलैंड के रिश्ते में यादें भी हैं, दोस्ती भी है, वैल्यूज भी है और एक कमिटमेंट भी है। भारत न्यूजीलैंड की यही वाका एक नई यात्रा पर निकलने के लिए तैयार है। हमारे सामने अवसरों से भरा खुला समुद्र है, हवाएं हमारे साथ है, समंदर की विशाल लहरें हमारे साथ है, इच्छा शक्ति का नीला आसमान हमारे साथ है, पाने को काफी कुछ है और मैं जानता हूँ हम सफल होंगे।
0: पंजुमीना, आकाशवाणी समाचार के लिए ऑकलैंड, न्यूजीलैंड।
2: पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य के लिए समान नागरिक संहिता विधेयक के मसौदे की जांच के लिए 9 सदस्यीय समिति का गठन किया है। सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई इसके अध्यक्ष होंगे। मेघालय के पूर्व राज्यपाल तथागत रॉय भी समिति के सदस्यों में शामिल हैं। 2 जुलाई को मंत्रिमंडल की बैठक में समान नागरिक संहिता विधेयक के मसौदे की जांच के लिए समिति गठित करने का निर्णय लिया गया था। एक राष्ट्र एक चुनाव पर संयुक्त संसदीय समिति के अध्यक्ष सांसद पीपी चौधरी ने कहा है कि लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराने से शासन व्यवस्था मजबूत होगी, खर्च कम होगा और देश की अर्थव्यवस्था को लाभ होगा। गोवा में मीडिया से बातचीत में श्री चौधरी ने कहा कि सभी प्रमुख राजनीतिक दलों का प्रतिनिधित्व करने वाली 41 सदस्यीय समिति सरकारों, राजनीतिक दलों, संवैधानिक विशेषज्ञों, नागरिक समाज और अन्य हितधारकों के विचार जानने के लिए राज्यों का दौरा कर रही है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। भारतीय पर्यटकों को ले जा रही एक स्पीड बोट के आज वियतनाम के फुक्वोक द्वीप के पास पलट जाने से 15 भारतीय पर्यटकों की मौत हो गई। वियतनाम स्थित भारतीय दूतावास ने पुष्टि की है कि मृतकों में 13 पुरुष और 2 महिलाएं शामिल हैं। दूतावास ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में मृतकों की सूची साझा करते हुए कहा कि ये नाम वियतनामी अधिकारियों द्वारा उपलब्ध कराए गए हैं। दूतावास के अनुसार मृतकों में से 10 तमिलनाडु से, 3 आंध्र प्रदेश से और 2 केरलम से थे। नाव में 32 भारतीय पर्यटकों, 3 चालक दल के सदस्यों और 1 परिचारक सहित कुल 36 लोग सवार थे। 17 यात्रियों और चालक दल के 4 सदस्यों सहित 21 लोगों को बचा लिया गया और अस्पतालों में भर्ती कराया गया। 2 जीवित बचे लोगों की हालत गंभीर बनी हुई है और उन्हें गहन चिकित्सा देखभाल दी जा रही है। एक रिपोर्ट।
3: 32 भारतीय पर्यटकों और 4 चालक दल के सदस्यों को ले जा रही यह नाव होन में रूत नगोई द्वीप से लगभग 400 मीटर दूर पलट गई, जिसके बाद बचाव अभियान शुरू किया गया। हनोई स्थित भारतीय दूतावास ने बताया कि खोज और बचाव अभियान जारी है। कुछ घंटे पहले हुई इस दुर्घटना के कारणों का पता लगाया जा रहा है। वहीं प्रभावित परिवारों को जानकारी और सहायता प्रदान करने के लिए हो ची मिन्ह सिटी स्थित भारतीय दूतावास में एक नियंत्रण कक्ष स्थापित किया गया है। यहां 8436789185523714 और 8433452414 नंबरों से संपर्क किया जा सकता है। आकाशवाणी समाचार के लिए समाचार कक्ष से करिश्मा राय।
2: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय नागरिकों के साथ हुई इस दुखद नाव दुर्घटना पर शोक व्यक्त किया है। अपने संदेश में उपराष्ट्रपति ने घायलों के शीघ्र और पूर्ण स्वस्थ होने की कामना की है। प्रधानमंत्री मोदी ने अपनों को खोने वाले परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की है और घायल लोगों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने व्यक्तित्व निर्माण में पुस्तकालयों की महत्वपूर्ण भूमिका का उल्लेख करते हुए युवा पीढ़ी से पुस्तकालयों से जुड़ने की अपील की है। आज नई दिल्ली में जयप्रकाश नारायण सार्वजनिक पुस्तकालय का उद्घाटन करते हुए उन्होंने राष्ट्र निर्माण में पुस्तकालयों की भूमिका का उल्लेख किया और कहा कि वे आधुनिक शिक्षा के साथ साथ जन समुदाय में देश की संस्कृति और ज्ञान के प्रसार का सशक्त माध्यम है। एक रिपोर्ट।
4: केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि जयप्रकाश नारायण सार्वजनिक पुस्तकालय में 32,000 से अधिक पुस्तकों का संग्रह है। उन्होंने कहा कि पुस्तकालय में शोधकर्ताओं के लिए समर्पित सुविधाएं, एक आधुनिक बहुउद्देशीय सभागार, समकालीन पाठन क्षेत्र, बाल क्षेत्र, एक शोध केंद्र और 1 करोड़ ऑनलाइन पुस्तकों तक पहुंच प्रदान करने वाला एक ई पुस्तकालय मौजूद है। पुस्तकालय में हर स्थान पर मुफ्त वाईफाई उपलब्ध है। उन्होंने बताया कि कई

0: मॉनिटर भी लगाए गए हैं जिससे आगंतुक अध्ययन के दौरान नोट्स ले सकते हैं, सामग्री डाउनलोड कर सकते हैं तथा अपने विचारों को और विकसित कर सकते हैं। पुस्तकालय अत्याधुनिक RFID आधारित पुस्तक प्रबंधन प्रणाली से सुसज्जित है। समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
1: प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना ने देश भर में 2 लाख से ज्यादा सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों को ऋण मंजूर करने का अहम पड़ाव पार कर लिया है। योजना के अंतर्गत 20,300 करोड़ रुपए से ज्यादा का निवेश हुआ है और लगभग 11 लाख प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर पैदा हुए हैं। नई दिल्ली में आज विशेष कार्यक्रम में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री चिराग पासवान ने कहा कि ये उपलब्धि भारत की खाद्य प्रसंस्करण विकास यात्रा के अगले चरण के लिए मजबूत आधार है। श्री पासवान ने योजना के तहत मिलने वाली सीड कैपिटल की सहायता का भी उल्लेख किया। इसके माध्यम से 4,18,000 से ज्यादा स्वयं सहायता समूह के सदस्यों की मदद की गई है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने तेलंगाना के संगारेड्डी जिले के नंदीगामा क्षेत्र में स्थित मेधा रेल कोच कलपुर्जा निर्माण सुविधा स्थल का निरीक्षण किया। 375 एकड़ भूभाग में फैली ये विशाल औद्योगिक इकाई रेलवे के आधुनिकीकरण में महत्वपूर्ण प्रगति को प्रदर्शित करती है। अपनी यात्रा के दौरान श्री वैष्णव ने मेक इन इंडिया पहल के एक महत्वपूर्ण हिस्से के रूप में निजी क्षेत्र के उद्यमों को बढ़ावा देने संबंधी सरकार की वचनबद्धता पर बल दिया। आज विश्व जनसंख्या दिवस है। इस अवसर पर केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा है कि स्वैच्छिक परिवार नियोजन, जागरूक निर्णय और स्वस्थ परिवार समावेशी तथा सतत विकास की मजबूत नींव है। सोशल मीडिया संदेश में उन्होंने कहा कि इस वर्ष का विषय है मां और बच्चे के कल्याण के लिए गर्भधारण के बीच स्वस्थ अंतराल और नियोजित पितृत्व। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने विश्व जनसंख्या दिवस 2026 के अवसर पर राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत सर्वोत्तम पद्धतियों पर मासिक वेबिनार श्रृंखला का शुभारंभ किया है। इस पहल का उद्देश्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के बीच स्वास्थ्य सेवा नवाचारों को साझा करना और उनका विस्तार करना है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने आज महाराष्ट्र के नागपुर में ब्रिक्स देशों के परिवहन मंत्रियों की तीसरी बैठक की अध्यक्षता की। श्री गडकरी ने बताया कि बैठक में वैकल्पिक जैव ईंधन तथा प्रदूषण मुक्त प्रौद्योगिकियों के माध्यम से सड़क, रेल, विमानन और जल परिवहन को कार्बन न्यूट्रल बनाने के उपायों पर चर्चा हुई। उन्होंने बताया कि सहयोग को और मजबूत करने के लिए ब्रिक्स मंत्री स्तरीय घोषणा 2026 भी अपनाई गई।
2: ट्रांसपोर्ट सेक्टर में विशेष रूप से हमारी रोड सेक्टर, रेलवे, जलमार्ग और एविएशन, एक क्षेत्र में कार्बन न्यूट्रल हम कैसे बने, अल्टरनेटिव और बायोफ्यूल का भी उपयोग कैसे करें और प्रदूषण से तो मुक्ति मिलेगी भी और उसके साथ साथ जो नई नई टेक्नोलॉजी है, इनोवेशन है, रिसर्च है, अलग अलग ब्रिक्स देशों में एक दूसरे में कैसे कोऑपरेशन करें, कोऑर्डिनेशन निर्माण करें, इसके बारे में एक रेजोल्यूशन पास हुआ है और उसमें आगे की नीति भी तय हुई है।
1: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। मौसम विभाग ने अगले 4-5 दिनों में देश के उत्तरी और पूर्वी हिस्सों में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। इन इलाकों में जम्मू कश्मीर और लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा, दिल्ली, पूर्वी उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और ओडिशा शामिल हैं। इस बीच विभाग ने कल असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई वाले क्षेत्रों, सिक्किम और बिहार में मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अगले 2-3 दिनों में बारिश वाले इलाकों के साथ साथ अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, पूर्वी और पश्चिमी मध्य प्रदेश में बिजली कड़कने और तेज हवाओं के साथ आंधी तूफान आने की संभावना है। तटीय आंध्र प्रदेश में कल लू की स्थिति हो सकती है। दक्षिण पश्चिम मानसून के फिर से सक्रिय होने के बाद महाराष्ट्र में खरीफ फसल की बुआई में तेजी आई है। कृषि आयुक्त कार्यालय के अनुसार 6.51 हेक्टेयर पर बुआई पूरी हो चुकी है। इस बुवाई में 7 जुलाई तक गन्ने को छोड़कर राज्य के 14.44 करोड़ हेक्टेयर औसत क्षेत्र के 45% हिस्से को सम्मिलित किया गया है। गन्ने की खेती सहित 6.58 करोड़ हेक्टेयर में बुवाई और रुपाई का काम पूरा हो चुका है। ये कुल क्षेत्र का 42% है। तूफान बावी के चीन के पूर्वी तट की ओर बढ़ने के कारण चीन में एहतियातन 6 लाख से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। ये तूफान जापान के साकिशिमा द्वीपों और उत्तरी ताइवान से गुजरने के बाद अब चीन

0: चुके हैं। भारतीय तीरंदाज ज्योति सुरेखा वेन्नम, प्रीतिका प्रदीप और चिकिता तनिपार्थी की टुकड़ी ने आज तीरंदाजी विश्व कप के चौथे चरण में रजत पदक अपने नाम किया। टीम को महिला कंपाउंड टीम स्पर्धा के फाइनल में कोलंबिया से हार का सामना करना पड़ा। वहीं प्रीतिका प्रदीप ने व्यक्तिगत महिला कंपाउंड में कांस्य पदक जीता। विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स के फाइनल में चेकिया की कैरोलिना मुखोवा और लिंडा नोस्कोवा आमने सामने हैं। वहीं पुरुष डबल्स के फाइनल में ब्रिटेन के हेनरी पैटन और फिनलैंड के हैरी हेलियावारा ने क्रोएशिया के मटे पाविक और अल साल्वाडोर के मार्सेलो अरेवालो की जोड़ी को 7-6, 7-6 से हराकर पुरुष डबल्स का खिताब अपने नाम किया है। भारत ने इंग्लैंड के साथ 5 T20 मैचों की श्रृंखला का अंतिम मुकाबला साउथहैम्पटन में जारी है। ताजा समाचार मिलने तक इंग्लैंड ने 16 ओवर में एक विकेट पर 210 रन बना लिए हैं। इंग्लैंड ने श्रृंखला में 3-0 की अजेय बढ़त हासिल कर रखी है। भारतीय महिला क्रिकेट टीम और इंग्लैंड के बीच एकमात्र टेस्ट मैच लंदन के ऐतिहासिक लॉर्ड्स मैदान पर खेला जा रहा है। दूसरे दिन आज भारत ने अपनी दूसरी पारी में ताजा समाचार मिलने तक बिना विकेट गवाए 42 रन बना लिए हैं। इससे पहले इंग्लैंड की पहली पारी 170 रन पर सिमट गई। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी न्यूजीलैंड की ऐतिहासिक यात्रा संपन्न करने के बाद स्वदेश रवाना। कहा, दोनों देशों के बीच व्यापार समझौते से भारत विकसित राष्ट्र बनने की ओर तेजी से बढ़ेगा। वियतनाम में नाव दुर्घटना में 15 भारतीयों की मौत। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने शोक व्यक्त किया। पश्चिम बंगाल सरकार ने समान नागरिक संहिता के मसौदा विधेयक की जांच के लिए सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में 9 सदस्यीय समिति का गठन किया। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में नॉर्वे और इंग्लैंड तथा मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना और स्विट्जरलैंड के बीच क्वार्टर फाइनल मुकाबला। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: Good evening. This is Akashwani and I am Valsa Williams with the news at 9. The headlines. Prime Minister Narendra Modi departs for home after concluding landmark New Zealand visit. Says bilateral trade agreement between two countries will accelerate India's journey towards a developed nation. 15 Indians killed in a boat mishap in Vietnam. President, Vice President and Prime Minister express condolence. West Bengal government forms 9-member committee headed by a retired judge to examine draft bill of uniform civil code. Legendary singer S. Janki, known as Nightingale of South India, passes away. IMD forecasts heavy rainfall across northern and eastern parts of the country for next 4 to 5 days. In FIFA World Cup, Norway to take on England, while defending champions Argentina to clash with Switzerland in quarterfinals. And Indian women's compound team clinches silver medal at Archery World Cup Stage 4 in Madrid. Prime Minister Narendra Modi has concluded his historic 2-day visit to New Zealand and departed for India. The visit, the first by an Indian Prime Minister to New Zealand in over 4 decades, gave a major boost to bilateral ties. During the visit, Prime Minister Modi held talks with his New Zealand counterpart Christopher Luxon. The two leaders witnessed the exchange of 5 memoranda of understanding in areas including defence, tourism, sports, disaster management and dairy and animal husbandry. A major highlight of the visit was the community event at Auckland's Spark Arena, attended by over 10,000 members of the Indian diaspora. Addressing the gathering, Mr. Modi stated that the future of India and New Zealand is intertwined and the bilateral trade agreement will accelerate India's journey towards a developed nation.
2: भारत और न्यूजीलैंड के रिश्ते में यादें भी हैं, दोस्ती भी है, वैल्यूज भी है और एक कमिटमेंट भी है। भारत न्यूजीलैंड की यही वाका एक नई यात्रा पर निकलने के लिए तैयार है। हमारे सामने अवसरों से भरा खुला समुद्र है। हवाएं हमारे साथ है, समंदर की विशाल लहरें हमारे साथ है, इच्छा शक्ति का नीला आसमान हमारे साथ है। पाने को काफी कुछ है और मैं जानता हूं हम

0: Good evening and welcome to Market Mantra. Today being Saturday, we will take calls from you, our listeners, on market related queries. But listeners, do remember that we do not address stock or company specific queries. You can call us on these numbers: 2331 4444, 2330481, and 2371 7106. And of course, do remember to prefix the Delhi STD code 011 in front of these numbers. I am Anubha Rohatgi with my co-anchor Prachi Priya.
1: Namaskar, Market Mantra mein aapka abhinandan. Shrotaon, aaj shanivar hai aur har shanivar ki tarah hum aapke phone calls par puche gaye sawalon ko seedha karyakram mein shamil karenge. Aap hame call kijiye 2331 4444, 2331 0481 और 2371 7106 पर. दिल्ली से जो बाहर के श्रोता हैं वो इन नंबरों से पहले दिल्ली का एसटीडी कोड 011 भी डायल करें. लेकिन श्रोताओं, याद रखें कि किसी खास स्टॉक या कंपनी से जुड़ी जानकारी हम इस कार्यक्रम में आपको नहीं दे पाएंगे. बहरहाल, आपके प्रश्नों के उत्तर लेकर स्टूडियो में आमंत्रित हैं वरिष्ठ आर्थिक विशेषज्ञ शरद कोहली. शरद जी, कार्यक्रम में आपका अभिनंदन.
2: धन्यवाद प्राची, थैंक यू सो मच अनुभा, सभी श्रोताओं को मेरा दिल से अभिवादन.
1: चर्चा शुरू करेंगे श्रोताओं और आपसे बातचीत भी करेंगे, मगर उससे पहले आइए सुने सुर्खियां.
0: थैंक यू प्राची. Benchmark domestic indices snap 4-week winning streak. Sensex and Nifty decline nearly 0.3%. India and New Zealand elevate ties to strategic partnership, set to double bilateral trade to 35,000 crore rupees by 2030. And global crude oil prices jumped this week amid renewed hostilities in West Asia.
1: प्रमुख घरेलू शेयर सूचकांक लगातार चार हफ्तों की बढ़त के बाद इस सप्ताह लुढ़के. सेंसेक्स और निफ्टी में लगभग 0.3% की गिरावट आई. भारत और न्यूजीलैंड ने अपने संबंधों को रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ाया. वर्ष 2030 तक वस्तु और सेवा में हर साल द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करके 35,000 करोड़ रुपए करने का लक्ष्य रखा है. और पश्चिम एशिया में फिर से बढ़ते तनाव के कारण इस सप्ताह कच्चे तेल की वैश्विक कीमतों में उछाल आया.
0: And before we begin the program and take your calls, a very important announcement for our listeners. The views and opinions expressed by experts in this program are their own and not those of Akashvani. Akashvani advises its listeners to do their own research or consult a registered professional before taking any investment decision. We further advise all listeners to exercise due diligence and rely on their own judgment for taking any financial decision. And over to Prachi for the top story of the day.
1: Top story lenge Anubha, magar usse pehle Uttar Pradesh se हमारे साथ विवेक जुड़ रहे हैं. विवेक जी, कार्यक्रम में आपका अभिनंदन, कृपया अपना सवाल पूछिए.
3: मार्केट मंत्रा टीम और आज के एक्सपर्ट को नमस्कार.
2: नमस्कार
3: मैम, मेरा सवाल ये है कि मैं जो इनकम टैक्स का AIS फॉर्म होता है
2: जी,
3: मुझे इनकम टैक्स फाइल करना है, तो जब मैंने AIS फॉर्म डाउनलोड किया है
2: जी,
3: तो उसमें मुझे सर, चूंकि मैं म्यूचुअल फंड में SIP के थ्रू इन्वेस्टमेंट करता हूँ
2: जी,
3: और जो भी मुझे एरियर वगैरह बीच में पेड होता है वो मैं कम अमाउंट लमसम भी उसमें इन्वेस्ट करता हूँ
2: जी,
3: तो लमसम के लिए मैंने सर जो फंड सेलेक्ट किए हुए हैं उसमें मैंने STP के माध्यम से लिक्विड फंड में डाला हुआ था, और STP के माध्यम से मैं अपने SIP में म्यूचुअल फंड में पैसा ट्रांसफर करता रहता हूँ.
2: ओके
3: तो सर, जो AIS में है उसको

0: मुझे किस प्रकार इनकम टैक्स में दिखाना पड़ेगा, मुझे EIS से समझ नहीं आ पा रहा है। उसमें ट्रांजेक्शन आ रही है, 15 से 20 ट्रांजेक्शन है, तो उसको मैं कैसे समझ के उसको फाइल करूँ क्या गाइड?
1: चलिए विवेक और अनुभव और प्राची, क्योंकि टैक्स फाइलिंग सीजन चल रहा है, 31 जुलाई उसकी लास्ट डेट है, तो मुझे लगा बहुत सारे श्रोताओं को, और बड़ी तारीफ की बात यह है कि विवेक उसको खुद करने की कोशिश कर रहे हैं बजाय किसी प्रोफेशनल की हेल्प लेने के। AIS का मैंने एक नया नाम दिया है उसको, वैसे तो एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट कहते हैं, मैंने इसका नाम दिया आईना इसे समझिए, क्योंकि ये आपको आपके साल भर के ट्रांजेक्शन के बारे में पूरी एक लेखा जोखा सामने दिखा देता है। तो विवेक, जो SIP म्यूचुअल फंड में आपने किए हुए हैं उनको अगर आप उनसे सहमत हैं, देखिए AIS केवल एक ट्रैकिंग सिस्टम है, यानी कि आपने जो एसेट्स में इन्वेस्ट किया है, को बड़ा खर्च किया है, प्रॉपर्टी ली है, शेयर्स लिए हैं, कुछ भी ऐसा ट्रांजैक्शन किया है, तो AIS आपको एक दिशा दिखाने का है। तो आपको मैं यह सलाह दूंगा कि अगर AIS में जो एंट्रीज आ रही हैं आपके SIP की, अगर वो मैच कर रही हैं आपके असली निवेश के साथ, तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। अगर आपके म्यूचुअल फंड से कोई मुनाफा हुआ है, डिविडेंड आया है, या आपको कोई कैपिटल गेन हुआ है, उसी को आपने अपने रिटर्न में दिखाना है। आयकर विवरणी में अगर IFS जो स्केड्यूल होता है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, वहां दिखा सकते हैं। अगर कोई आपको डिविडेंड आया है, कैपिटल गेन आया है, तो एक स्केड्यूल CG होता है, उसमें आप दिखा सकते हैं। AIS सिर्फ आप रिकंसाइल कर लीजिए, अगर आपको लगता है कि आपने जो असल में किया है और AIS के बीच में कोई फर्क है, तो उसमें नीचे आप स्क्रोल करेंगे तो एक फीडबैक का ऑप्शन होता है, उस फीडबैक के माध्यम से आप कह सकते हैं कि ये ट्रांजेक्शन मेरा नहीं। अक्सर होता है किसी और के ट्रांजेक्शन आपके AIS में आने लग जाते हैं, तो आप वो कर सकते हैं। तो एक सिर्फ इन्फॉर्मेशन है, आप उसको देख लीजिए कि आपके असली ट्रांजेक्शन से वो मैच कर रहा है कि नहीं। बाकी आपने जो आयकर रिटर्न में दिखाना है, वो आपने इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज डिविडेंड दिखाना है, या उस म्यूचुअल फंड से अगर कैपिटल गेन हुआ है तो दिखाना
2: जी। Let's take the next call coming in from Bangalore. Shrikant has joined us online. Shrikant, welcome to Market Mantra. Please ask your question.
3: हाँ जी, नमस्कार जी।
2: नमस्ते, अपना सवाल पूछिए।
3: मुझे कहना है कि जिस तरह 4 महीने पहले जो लड़ाई हुई थी, उसके कारण दूध के दाम $70 से बढ़ के 126 तक पहुंचे
1: जी।
3: हमारी सरकार ने वहां पे 13-14 रुपए जो है वो पेट्रोल के दाम बढ़ा दिए, ठीक है। अब वो वापस 126 से 70 पे आ गया, लेकिन वो वहीं पड़ा है। उसी तरह से जिस तरह 4 साल पहले जब रशिया की अटैक हुई थी, तो उसी समय भी $70 पे रेट था और बढ़ के 140 हुआ, तो हमारी सरकार ने उसको बढ़ा करके 100 कर दिया पेट्रोल को, और फिर जब जब दाम घड़े क्रूप थे तब तब आपने उस पर टैक्स लगा के हमेशा उसको बराबर रखा। तो अगर भाई साहब यही हालत रही तो ना तो इन्फ्लेशन कम होने का है और ना जनता की दुविधा कम होगी।
1: श्रीकांत जी देखिए, मैं थोड़ा इसके पीछे का आपको गणित बता देता हूँ। आप जो कह रहे हैं हम उसका सम्मान करते हैं, हर एक की अपनी अपनी ओपिनियन होती है, हर एक के अपने अपने विचार होते हैं
2: जी।
1: एक तो पहले 76 दिन कीमतें नहीं बढ़ी थी, तो पहले 76 दिन में बहुत बड़ा 1,000 करोड़ रुपए प्रतिदिन का इन ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को घाटा हो रहा था। दूसरा इसमें यह भी बात है कि ऐसा नहीं है कि ये दाम घटेंगे नहीं, अगर ये $70 अब देखिए ना, हम जब बल्कि मैं भी सोच रहा था कि अब तो $71-72 हो गए तो शायद बढ़े, उसी टाइम फिर से लड़ाई शुरू हो गई, फिर ये 2 दिन पहले $80 के आसपास पहुंच गया, $79 के आसपास पहुंच गया। तो पेट्रोलियम मंत्री महोदय जो हैं हरदीप पुरी जी, उनका बयान आया पीछे कि हम 2-3 महीने देख रहे हैं, ये अगर टिक जाते हैं वहां पर तो हम घटाएंगे, क्यों नहीं घटाएंगे लोगों को। और अभी भी श्रीकांत जी मैं बताना चाहूंगा कि डीजल में अभी भी अंडर रिकवरी है, पेट्रोल में तो आ गया था पर डीजल में अभी भी अंडर रिकवरी का मतलब है उनको प्रति लीटर घाटा हो रहा है। तो जैसे ही घाटे की भरपाई होगी करेंगे, हम भी उम्मीद रखते हैं कि करेंगे, और सरकार बकायदा इस पे जो आप बात कह रहे हैं, आपके जो भावनाएं हैं वो सम्माननीय है, और मैं उम्मीद करता हूं कि जनता की आवाज सरकार तक पहुंचती है, और उसको जब उचित समय होता है उसके पीछे गणित होता है, तो उस गणित को ध्यान में रख के। बाकी ये बात सच है कि जब पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते हैं, पहली बात तो 13-14 नहीं, 7.5-8 रुपए बढ़ाए गए, 13-14 तो खैर नहीं बढ़े थे, पर श्रीकांत जी को मेरे ख्याल जो उसके कारण महंगाई है शायद वो पिंच कर रही होगी। मुझे उम्मीद है श्रीकांत जी, अगर ये कीमतें $80 से नीचे रही और 1-2 महीने तक, तो ये जरूर घटाए जाएंगे।
4: कोलकाता से हमारे साथ LP कोठारी जुड़ रहे हैं। कोठारी जी, कार्यक्रम में आपका अभिनंदन, कृपया अपना सवाल पूछिए।
5: हाँ, गुड इवनिंग मार्केट मंत्रा। कोहली जी को नमस्कार।
1: नमस्कार कोठारी जी।
5: कोहली जी, जैसे मैं तो इनकम टैक्स का प्रैक्टिस करता हूँ, तो ये AIS और TIS की फिगर जो है 90% 95% तक ठीक है सब
1: जी,
5: लेकिन कुछ ऐसे केसेस है जिनमें उनकी फिगर कंफ्यूजिंग आ रही है
1: जी।
5: वो मिल नहीं है जो एक्चुअल

0: फीवर मेरी है, हमारे क्लाइंट्स की है, उससे वो अलग आ रही है
1: जी.
0: और इसमें से भी जैसे सेल्स सिक्योरिटी सेल्स वगैरह की फिगर है, तो सर अब मैं उनको या इस टीएस को फॉलो करें, या हमारे पास कुछ ऐसा रास्ता है कि हम उनको इनको ये कह सके कि भाई ये फिगर जो है वो सही नहीं है.
1: जी बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है कोठारी साहब. आपसे पहले भी एक दर्शक इसी से मिलते जुलती बात पूछ रहे थे. मैं आपको बता दूं कि AIS जो है एक सूचक है, एक इन्फॉर्मेशन जो क्लेट होकर आती है उसको प्रेजेंट करने का आपके लिए एक रिकंसिलिएशन दिया जाता है. अगर आप उससे सहमत नहीं है कोठारी साहब, आपको लग रहा है कि जो आपने ट्रांजैक्शंस किए हैं असल में वो ट्रांजैक्शंस आपके नहीं, ऐसा भी अक्सर अनुभव प्राची देखा गया कि जैसे पैन नंबर गलत डाल दिया तो किसी और का प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन, किसी और के शेयर्स हमारे AIS में दिखते हैं, तो वहां पर कोठारी साहब नीचे फीडबैक का ऑप्शन है, आप उसमें फीडबैक डालिए. अगर आपको लग रहा है कुछ ट्रांजैक्शन आपके असली ट्रांजैक्शन से रिकंसाइल नहीं कर रहे हैं तो आप उसमें फीडबैक डालिए कि ये ट्रांजैक्शन मेरा नहीं है, उसको उसका संज्ञान लिया जाएगा, उसको ठीक किया जाएगा. तो कोई बहुत ज्यादा विशेष चिंता की बात नहीं. आपकी रिटर्न अगर आपके ट्रांजैक्शन पर एक्यूरेटली बनाई गई है तो AIS में थोड़ा इधर उधर भी होता है तो आप उसका बाद में जवाब दे सकते हैं.
2: दिल्ली से हमारे साथ बीरबल जुड़ रहे हैं. बीरबल जी, कार्यक्रम में आपका अभिनंदन.
3: नमस्कार कोहली साहब को. नमस्कार.
1: नमस्कार बीरबल जी.
3: मैं सर ये पूछना था, जैसे मेडिक्लेम के ऊपर गवर्नमेंट ने GST कटाया था
1: जी,
3: मैंने मेरी अभी पॉलिसी ड्यू हुई है इसकी किस्त भर दी, मैंने पता किया था मेरी बैंक के थ्रू है, उसका ग्रुप पॉलिसी है ये, उसमें उन्होंने GST नहीं कटाई, ठीक है क्या जी?
1: देखिए GST जिन पॉलिसीज पे घटाया गया है वो बीरबल जी वो पॉलिसीज की लिस्ट आपके पास है. कोई एक पॉलिसी है जिसपे शायद इनका GST नहीं घटा है या उसपे अभी भी GST चल रहा है, और भी जैसे कार इंश्योरेंस है, व्हीकल इंश्योरेंस है, उसपे भी GST है, तो सब चीजों पे नहीं घटाया गया है. मुझे लग रहा है GST 2.0 जब सेप्टेम्बर में आया तो बहुत सारी चीजों पर घटाया गया और बहुत विचार करके, बहुत लंबा उस पर चिंतन चला, बहुत लंबा उस पर बकायदा रिसर्च की गई कि कहां कहां लोगों को राहत देनी है. उम्मीद करते हैं आप जहां दूसरी चीजों पर भी चाहते हैं शायद आने वाले समय में वो घटाया जाए, तो फिलहाल अब जैसा है तो है, आप भी देते हैं हम भी देते हैं
2: जी. लेट्स टेक द नेक्स्ट कॉल कमिंग इन फ्रॉम बेंगलुरु. NR प्रसाद जॉइंस अस ऑनलाइन नाउ ऑन द अदर साइड ऑफ द फोन लाइन. मिस्टर प्रसाद, वेलकम टू मार्केट मंत्रा, प्लीज आस्क योर क्वेश्चन.
4: Hi, good evening, Market Mantra. This is Anna Prasad from Bangalore. Hello, Mr. Rohatki. Hello, Ms. Prachi. Good evening, Sharajji.
1: Good evening, Mr. Prasad.
4: Two questions, Sharajji.
1: Yes.
4: My first question is, about 3-4 weeks back, there was an analysis from the leading company.
1: Yeah.
4: India has fallen down to the 6th position in the top 10 market in the world. It is gone behind Taiwan and now it is in the 6th place.
1: Okay.
4: Basically, this is because of the, could be because of the geopolitical and war in India.
1: Yeah.
4: But it has fallen down to 6th position. How do you see now Indian market versus the foreign stock market?
1: Okay.
4: My second question is, SEBI has revived the buyback schemes from 1st of August.
1: Yeah.
4: Now, what will be the features for this? Personally, when I sell this thing on a buyback scheme,
1: yeah,
4: how the capital gains are applicable to me? Thank you. These are my two questions.
1: All right, Mr. Prasad, your first question is that the market cap, you know, is what Mr. Prasad is referring to, Anubha and Prachi. Yes, market capitalization, the way it is calculated, number of shares floated by the market price of the share. So I think this is a very fluctuating piece of data. And right, because Taiwan and all that, because they are into semiconductors and so on. Yeah. So our market, because of the geopolitical reasons and because of crude oil, because our country was heavily exposed to crude oil shocks. 87-88% of our total crude, yes, is imported. So obviously we were quite impacted vis-a-vis crude oil. So that was the reason our markets reacted. We have now recovered from that point. We had almost gone down to 23,000. I'm talking of Nifty. We are now well above 24,000. And global markets, each zone in the geography has its own fundamentals. Sometimes we find the Kospi reacting. Sometimes we find the Nikkei reacting. Sometimes we find the Hang Seng. In fact, Hang Seng, the capitalization in Hong Kong market went ahead of us. Because Hong Kong is a tiny country. Sometimes we find FTSE, CAC, DAX, Dow, S&P, NASDAQ. So they keep reacting, So I think this cannot be taken as a parameter, Mr. Prasad, more importantly, to measure the, the performance of the company. I'm sure we will recover. Your second is about the buyback. Yes, buyback under the new rules applicable from 1st April, is that buybacks will now be treated as capital gains. Earlier, if you remember, they were treated as dividends, and the capital used to be treated in the

0: capital loss, but now they'll be treated as capital gain because they are not because of the taxability change which has been made in the budget, Mr. Prasad. I hope both the points are clear, and I remain very optimistic on the markets, and our markets will recover. It's just a matter of time before that happens.
1: Sharadji and Prachi, we have our next caller online with us, but before we take the call from Amit Shah from Delhi, Prachi, why don't you tell us how the markets behave this week?
2: Bilkul. प्रमुख घरेलू शेयर सूचकांकों में इस सप्ताह लगभग 0.3% की गिरावट आई. इससे लगातार चार हफ्तों की बढ़त का सिलसिला टूटा. पश्चिम एशिया में एक बार फिर से बढ़ते भू राजनीतिक तनाव का असर इस सप्ताह बाजार पर साफ साफ दिखाई दिया. हालांकि विदेशी और घरेलू संस्थागत निवेशकों की लगातार लिवाली ने बाजार को थोड़ा सहारा दिया. साथ ही कंपनियों की पहली तिमाही के नतीजे ने बाजार पर सकारात्मक प्रभाव डाला और इस कारण सप्ताह के दूसरे भाग में बाजार को रिकवरी में मदद मिली. बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स इस सप्ताह 195 अंक गिरकर 77,569 पर बंद हुआ, जबकि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 64 अंक लुढ़ककर 24,207 पर आ गया. इस सप्ताह विस्तृत शेयर बाजार ने प्रमुख शेयर सूचकांकों से बेहतर प्रदर्शन किया. निफ्टी मिड कैप 100 में 1.3% की बढ़त हुई, जबकि निफ्टी स्मॉल कैप 100 इंडेक्स में 1.2% की तेजी आई. अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में इस सप्ताह भारतीय रुपया 10 पैसे कमजोर होकर 1 अमरीकी डॉलर की तुलना में 95.32 रुपए पर बंद हुआ. और जुड़ रहे हैं हमारे साथ दिल्ली से अमित झा. अमित जी, कार्यक्रम में आपका अभिनंदन, कृपया अपना सवाल पूछिए.
3: हेलो
2: जी, नमस्कार.
3: सर नमस्कार.
0: नमस्कार अमित जी.
3: मैं ये पूछा था सर, जैसे कि सभी अभी पश्चिम एशिया में जो हालात थे 2-3 महीने पिछले में सर
0: जी.
3: तो कंपनी के क्वार्टर फर्स्ट 26-27 के क्वार्टर में कैसे रहने की उम्मीद, क्योंकि प्रभावित तो हुई होगी उनकी बिक्री या कुछ भी इनकम वगैरह. और दूसरा सर प्रश्न ये है सर कि अभी भी हम कह तो रहे हैं कि हम ऊर्जा के अन्य स्रोत जैसे स्रोतों पर निर्भरता कम कर रहे हैं, जिससे हमें जो विदेशी मुद्रा जाती है, जैसे कि हम ऑयल एंड गैस का और उर्वरक का ज्यादा इंपोर्ट करते हैं. ये तो सभी जानते हैं, हम भी जानते हैं, लेकिन सरकार की ओर से कितना प्रयास हो रहा है, हम कितना गीगावाट अन्य स्रोतों से, जैसे मान लीजिए रिन्यूएबल हो गया, परमाणु एनर्जी हो गया, चाहे पवन ऊर्जा है, विंड एनर्जी है, इनसे हम थर्मल पावर के मुकाबले कितना प्रतिशत बढ़ रहे हैं? क्या आपके हिसाब से सर ये संतोषजनक है प्रगति?
0: जी, आपका पहला सवाल है Q1 रिजल्ट से. Q1 हम अप्रैल जून क्वार्टर के रिजल्ट्स बोलते हैं अमित. Q1 के रिजल्ट्स थोड़े से प्रेशर में रह सकते हैं, क्योंकि इस दौरान में युद्ध चल रहा था और क्रूड ऑयल की कीमतें बढ़ी हुई थी. अब थोड़ी सी क्रूड ऑयल की कीमतें ठंडी हुई हैं, तो आने वाला क्वार्टर बेहतर हो सकता है. पर इसमें हमें बहुत अच्छे रिजल्ट्स की मिक्स रिजल्ट्स आएंगे. कुछ अभी पीछे एक IT कंपनी का रिजल्ट आया जिसमें मिला जुला सा रिजल्ट आया, तो मैं समझता हूँ ये क्वार्टर थोड़ा सा प्रेशर में रहेगा. दूसरा, आपने एनर्जी सोर्सेज का पूछा, तो अभी तो बहुत लंबा डिस्कशन हो जाएगा, मैं किसी एक का उठा लेता हूँ. परमाणु सिविल न्यूक्लियर फैसिलिटी जो होती है, अभी हम लगभग 9 गीगावाट हम न्यूक्लियर उससे प्रोड्यूस कर रहे हैं. हमारा लक्ष्य है कि 2047 विकसित भारत का जो हमने टारगेट रखा है उसमें 100 गीगावाट पहुंचाने का. तो बिल्कुल काम चल रहा है उस पर. बायोगैस हो गया, सोलर हो गया, विंड एनर्जी हो गया, इस पे बहुत तेजी से काम चल रहा है अमित. और अब ये जो हाल में संकट हुआ है, इसने एक तरह से एक्सेलरेटर दबा दिया है. मुझे लगता है जितनी भी संस्थाएं इस पे काम कर रही हैं उन सबको अब ये लगने लगा है कि इस पे तेजी से काम कर. भारत ने 2070 का लक्ष्य रखा था, पर मुझे लग रहा है हम उस लक्ष्य को और शीघ्र पा पाएंगे, ऐसी हम उम्मीद रखते हैं. हमारे आपके लाइफ टाइम में ही हम उम्मीद करते हैं ऐसा हो जाएगा. ऑल्दो आपको ईश्वर लंबी आयु दे. जी,
1: लेट्स टेक द नेक्स्ट कॉल. योगेश इज कॉलिंग अस फ्रॉम दिल्ली. योगेश, वेलकम टू मार्केट मंत्रा, प्लीज आस्क योर क्वेश्चन.
4: नमस्ते. रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट रीट और इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्ट जिसको बोलते हैं
0: जी,
4: उसको लेकर के है कि रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना इनके थ्रू कैसे अलग है म्यूचुअल फंड से, और जस्ट इन केस अगर प्रॉपर्टी प्राइसेस क्रैश होते हैं तो क्या उस केस में ये भी एक फिजिकल प्रॉपर्टी जितने ज्यादा गिर सकते हैं, या फिर डाइवर्सिफिकेशन की वजह से इनमें कम गिरावट होती है, और इनका बेंचमार्क इंडेक्स क्या होता है म्यूचुअल फंड की तरह?
0: बहुत अच्छा सवाल है योगेश। रीट और इनबिट का इन्होंने पूछा, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट और इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, दो नए प्रोडक्ट्स हैं। अगर हाँ योगेश, अगर कल को मार्केट क्रैश होता है प्रॉपर्टी का, तो उसमें फिर नेचुरल बात है इनकी वैल्यूएशन भी फर्क पड़ेगा। आपको पता है ये जो रिटर्न देते हैं अपने इन्वेस्टर्स को, ये डिविडेंड देते हैं। मान लीजिए किसी ने ऑफिस बिल्डिंग दी हुई है, उसका किराया आ रहा है, वो किराया सब लोगों में बांट दिया जाता है। कल को कोई बिल्डिंग बेची जाती है, उससे जो कैपिटल गेन होता है उस कैपिटल गेन को भी सब लोगों में बांट दिया जाता है। बिल्कुल, अगर प्रॉपर्टी प्राइसेस जहां इन्होंने लिया हुआ है अगर वो किसी वजह से क्रैश कर जाते हैं, हालांकि इतनी जल्दी प्रॉपर्टी के प्राइसेस इस तरीके से क्रैश नहीं करते जैसे स्टॉक मार्केट करती है, पर हां अगर उसमें करेक्शन आता है तो उसमें जो साझेदार हैं वो, और इसका मैं स्ट्रक्चर आप पूछ रहे थे, इसका स्ट्रक्चर आगे एक कंपनी होती है एसपीवी, उसको कहते हैं स्पेशल पर्पस व्हीकल होता है, और उसके आगे एक ट्रस्ट बनी होती है। उस ट्रस्ट में सब लोग जो है एक तरह से भागीदार बन जाते हैं और उन सब में उसको बांटा जाता है। इसका बेंचमार्क ऐसा कुछ नहीं होता है जैसा आपने पूछा, इसका जो टोटल वैल्यूएशन होता है, जो एसेट बेस होता है, क्योंकि हम यहां नाम नहीं लेते, मेरे दिमाग में एक दो बहुत फेमस रीट और इन्वेट के आ रहे, पर क्योंकि हम यहां नाम नहीं लेते तो वो बाकायदा उसका जितना उसका टोटल पोर्टफोलियो होता है उसी के अनुसार उसकी वैल्यूएशन की जाती है। मोटा मोटा आप इसको समझ सकते हैं। थोड़ा सा आज लोग बड़े लंबे लंबे डिस्कशन वाले पूछ रहे हैं और समय हमारे पास सीमित होता है, तो बहुत गागर में सागर भरना पड़ता है।
2: जी, मेरे लिए बहुत अच्छी बात है, मैं तो इसे बड़ा अच्छा मानती हूँ। जुड़ते हैं भिलाई से, भिलाई में हम रवि हमें कॉल कर रहे हैं। रवि जी, कार्यक्रम में आपका अभिनंदन करते हैं।
5: नमस्ते प्राची जी, नमस्ते अनुभव जी और शरद जी को नमस्ते।
0: नमस्कार,
5: मेरा शॉर्ट ही रहेगा सर
0: जी।
5: मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि ये जो गोल्ड और सिल्वर में कभी सबप्राइम क्राइसिस जैसी परिस्थिति आ सकती है क्या?
0: गोल्ड और सिल्वर में कैसी परिस्थिति आ सकती है? सतरंग परिस्थिति
5: में जो सब प्राइम क्राइसिस हुआ था,
0: सब प्राइम, अच्छा सब प्राइम से नहीं, गोल्ड और सब प्राइम का रवि जी मतलब ये था, 2008 में आई थी ये, और मुझे याद है एक बड़ा इन्वेस्टमेंट बैंकर था उस टाइम जिसमें ये क्राइसिस आई थी। हम नाम नहीं लेते हैं तो मैं नाम अवॉइड कर रहा हूँ, तो उसकी वजह से नहीं, सब प्राइम क्राइसिस इसमें नहीं आ सकती, क्योंकि ये वहां आती है जहां पर आप सारा ही उधार पर काम चलता है। सब प्राइम क्राइसिस का मतलब है कि आपने बहुत सारे मॉर्गेज किए हुए प्रॉपर्टी का, मुझे याद है हाउसिंग क्राइसिस थी, लोगों को अपने लोन रीपे करने में दिक्कत आ गई थी। नहीं, इसमें इसलिए नहीं आ सकती क्योंकि जो गोल्ड लोन्स लिए जाते हैं उसमें सोने को प्लेज किया जाता है, तो अगर आप लोन वापस नहीं कर पाते हैं तो आपने जो अपना आभूषण रखवाया हुआ है वो उनका हो जाता है, तो बड़ी सिंपल सी बात है। और उसका वो 70-80% आपको देते हैं, पूरा तो देते भी नहीं, तो वो करेक्शन ऑलरेडी, तो मुझे नहीं लगता इसमें रवि जी कोई सब प्राइम क्राइसिस जैसी कोई कभी सिचुएशन आएगी, ऐसा नजर नहीं आता है।
1: गौतम फ्रॉम गाजियाबाद इज ऑनलाइन विद अस, बट बिफोर वी टेक योर कॉल गौतम, लेट्स हैव अ लुक एट हाउ द यूएस मार्केट्स बिहेव्ड ड्यूरिंग द वीक एंड यस्टरडे। वॉल स्ट्रीट एंडेड ऑन अ पॉजिटिव नोट यस्टरडे। अमंग द मेजर इंडिसेस द S&P 500 गेन्ड 0.4% एंड द नैस्डैक कंपोजिट एज वेल एज द डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज रोज बाय 0.3%। फॉर द वीक द नैस्डैक क्लाइम्ड 1.7%, the S&P 500 increased by 1.2% while the Dow fell by 0.5%. Meanwhile, South Korean chipmaker giant, which made its US debut on Friday, opened 14% higher. Looking ahead, investors will focus on the quarterly earnings season, which kicks off next week, as well as developments in negotiations in West Asia. And now, Gautam, welcome to Market Mantra. Please ask your question.
6: Thank you. Good evening, Market Mantra team. I have a small question for the expert.
0: Yeah.
6: There is a stock which has been held for 5 years, which goes through a split.
0: Yeah.
6: And when this stock is sold, say within a year, what kind of capital gains will it attract?
0: All right, Gautam, if there's a stock split, you see, when you calculate capital gain, you from the selling price, you subtract the cost of the stock. So when it goes for a split, let's say a 10 rupee share is split into 2, 5 rupees each. So you'll obviously subtract 5 rupees from that, because now that the cost has been split into two portions. Suppose a 10 rupee share, which has been split into two, you end up selling for 50 rupees. So in 50 rupees, if you sell one part of the share, the cost of acquisition will be 5 rupees, which is two portions. So a 50 minus 5, 45, of course, will be the, and on that you pay, if it's long-term capital gain, you pay 12.5%. Otherwise, you pay on short-term capital gain. Yes.
2: और कोलकाता से हमारे साथ अतनु साहा जुड़ रहे हैं। महोदय, कार्यक्रम में आपका अभिनंदन, कृपया अपना सवाल पूछिए।
7: प्रणाम सर, प्रणाम सर, प्रणाम, एंड थैंक टू एवरीबॉडी एंड थैंक टू आवर ऑल इंडिया रेडियो। सर, माय क्वेश्चन इज रिलेटेड विद दिस, इज आउट ऑफ एल नीनो सिचुएशन राइट नाउ, इज एटलीस्ट व्हाट इज द इंफॉर्मेशन वी हैव, रेन इज गोइंग ऑन एवरीवेयर,
8: So what is your opinion about matter of, because India is based on agricultural sector, at least till now, till important as far as PPP is concerned. Sir, another point is that do we accept a credit loan towards, in this regard, related with, sir, our MSME and agricultural sector, credit from banks or another substitute areas? Thank you very much, sir.
0: All right, Mr. Tanu, the second part of your question wasn't very clear, although

0: I could get a gist of it. I think El Nino impact is being felt around the world, and India, you know, if you see the IMD forecast this year, yeah, it is said that we may be deficient in terms of monsoons by about 10% or so, although this the estimate keeps changing as we progress. So far there's been fairly okay rain and a little bit of deficiency somewhere, a little bit of excess somewhere. That's always the case with monsoon. Yes, because we are primarily an agri-driven economy, so any impact of weather does have an impact on our economy as well. And I think the second part of question is also related to that. What will be the impact on MSMEs? Yes, the agri-based industries and MSMEs also get impacted because the agriculture produces impacted. And by the way, El Nino is not necessarily about shortage of rain. El Nino makes things very unpredictable. Yes. You could have very big rain, very excessive rain. You could have absolute deficient rain. You could have unevenly distributed rain. You could have a regionally imbalanced rain. So El Nino can take many forms and shapes. We are just about the beginning of the monsoon season. Let's wait till the end of August to make a final conclusion, and then your answer will be more comprehensive.
1: Ji, shrotaon, aaiye aage badhte hain. Anya khabron mein, Bharat aur New Zealand ne Pradhan Mantri Narendra Modi aur New Zealand ke Pradhan Mantri Christopher Luxon ke beech Auckland mein hui vaarta ke baad aaj apne sambandhon ko ranneetik saajidari tak badhaya. इसके अंतर्गत वर्ष 2030 तक वस्तु और सेवा में अपने सालाना द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करके 35,000 करोड़ रुपए करने का लक्ष्य रखा है. प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि न्यूजीलैंड का उनका ये दौरा आपसी संबंधों को मजबूत करने के क्रम में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है. इससे दोनों देशों के बीच में स्थापित हुए संबंधों को नई गति मिलेगी. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि दोनों देशों के बीच घनिष्ठ संबंधों के चलते किसानों और युवाओं के लिए नए द्वार खुलेंगे.
2: हमने भारत न्यूजीलैंड संबंधों को स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के स्तर पर ले जाने का ऐतिहासिक निर्णय लिया है. इसके अंतर्गत हम हर क्षेत्र में स्पष्ट लक्ष्यों और ठोस परिणामों के साथ आगे बढ़ेंगे. इस वर्ष हमने रिकॉर्ड समय में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया. इस उपलब्धि से दोनों देशों के उद्योगों, किसानों और युवाओं के लिए नए द्वार खुलेंगे.
3: Right, let's take the next call from Bhargav, who's calling us from Delhi. Bhargav, we are running short of time, so I'll ask you to please be very brief.
4: Jain sir, ESIME, the sale proceeds dikhaye gaye hain, wo higher spread dikhaye gaye hain. Secondly, it does not exclude stamp duty, broker charges, and various charges like SEBI charges, GST charges, etc., which comes to around 0.8 to 0.9% this sale dikhaye gaye.
0: Bhargav ji, aapka jo shuru ka portion tha, that portion is not clear. You're talking of brokerage and all that, probably something relating to property. Main aapko salah dunga Bhargav ji, if you can please ask your question again next time, because the question wasn't very clear. My humble apologies.
1: Delhi se hamare sath Swabhin jud rahe hain. Swabhin ji, karyakram mein aapka abhinandan, kripya aapne sawal poochiye.
5: Namaskar sir.
0: नमस्कार
5: सर, मैं रेगुलर सुनता हूँ और फर्स्ट टाइम मैंने आज कॉल किया है और मेरा ही लकी है कि आज कॉल लग गया है.
0: बताइए बताइए
5: सर, मैं जैसे आईटीआर भरता हूँ हर साल और मेरी सैलरी 12 लाख रुपए की साल का भरता हूँ
0: जी.
5: अब तो सर टैक्स लगता नहीं है
0: जी,
5: तो क्या मुझे भरना जरूरी है सर?
0: देखिए, अगर रिबेट की वजह से, जिसको पहले 87A रिबेट कहते थे, अगर उस वजह से आपका बिलो टैक्स आ रहा है तो आपको भरना चाहिए. जो लोग बिलो एग्जेम्पशन लिमिट हैं, उन लोगों के लिए भरने की माफी है. 4 लाख से अगर आपकी कम है न्यू रिजीम में और 2.5 लाख से कम है ओल्ड रिजीम में, फिर तो आप नहीं भरेंगे. पर अगर रिबेट की वजह से, क्योंकि आपकी 12 लाख है तो आपको भरना चाहिए और उसको बाकायदा नील के रिटर्न आपको फाइल करना चाहिए.
3: Now let's have a look at the commodity prices, the weekly behavior. Crude oil, global crude oil prices rose sharply this week after US President Donald Trump said that the memorandum of understanding with Iran was over and that he did not want to engage with Tehran following renewed hostilities. During the week at the Intercontinental Exchange ICE, Brent crude September futures surged 5.4% to settle at $76.01 per barrel, while the West Texas Intermediate WTI crude August futures jumped 3.8% to end at $71.41 per barrel.
1: और शरद जी कार्यक्रम में आने के लिए और हमारे तमाम कॉल्स पर जितने श्रोताओं जुड़े हैं उनके सवालों के जवाब देने के लिए आपका बहुत बहुत
0: इट वाज माय प्लेजर थैंक यू सो मच धन्यवाद
3: एंड बिफोर वी क्लोज अ लुक एट द हेडलाइंस बेंचमार्क डोमेस्टिक इंडिसेस स्नैप फोर वीक विनिंग स्ट्रीक सेंसेक्स एंड निफ्टी डिक्लाइन नियरली 0.3% इंडिया एंड न्यूजीलैंड एलिवेट टाइज टू स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप सेट टू डबल बायलैटरल ट्रेड टू 35,000 करोड़ रुपीज बाय 2030

0: volatility. And global crude oil prices jumped this week amid renewed hostilities in West Asia. And that's it in this edition of the program. We will be back tomorrow at the same time. Do join us then. Till then, namaskar.
1: इस कार्यक्रम में विशेषज्ञों द्वारा विचार उनके अपने हैं। आकाशवाणी अपने श्रोताओं को सलाह देता है कि निवेश का निर्णय करने से पहले स्वयं रिसर्च करें या किसी पंजीकृत सलाहकार से राय लें।
2: You were listening to a repeat broadcast of today's Market Mantra program, originally aired at 6:30 p.m.

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर वक्त हो चुका है ठीक 11:41 और यह वक्त है आपके अपने पसंदीदा प्रोग्राम गीत मेरे मनमीत का। गीत मेरे मनमीत की वो महफिल जिसमें हम सुनहरे दौर के उन नगमों को लेकर आपके लिए आते हैं जो आपके दिल के बेहद करीब है और आप उसे बार बार सुनना चाहते हैं, पसंद करना चाहते हैं। हिंदी सिनेमा का वो सुनहरा दौर जब कहानियां दिल से निकलती थी, संवाद जिंदगी से जुड़े होते थे और धुनें सीधे रूह तक उतर जाया करती थी। आज हम आपको लेकर चलते हैं उसी खूबसूरत जमाने में जहां हर फिल्म अपने साथ एक नई रिवायत और एक नया अंदाज लेकर आती थी। साल था 1954 का, जिसमें एक महान फिल्मकार गुरुदत्त साहब ने दर्शकों को एक बहुत ही यादगार फिल्म दी थी और वो फिल्म थी आर पार। रहस्य और दिलचस्प किरदारों से सजी इस फिल्म में जॉनी वॉकर, श्यामा, शकीला, जगदीप और जगदीश सेट्टी ने अपनी शानदार अदाकारी से इसे यादगार बना दिया था। आर पार की एक और खासियत थी कि इसकी जबान फिल्म के संवादों में कहीं पंजाबी की गर्मजोशी थी तो कहीं उर्दू की नफासत, कहीं बंबईया बोली की चंचलता और कहीं आम हिंदुस्तानी की सादगी। यही रंग बिरंगी भाषा उस दौर की मुंबई की तहजीब और गंगा जमुनी संस्कृति की एक खूबसूरत झलक पेश करती थी। और जब बात उसके संगीत की हो तो ओपी नैयर की मस्त धुने और मजरूह सुल्तानपुरी साहब के दिलनशी अल्फाज का जिक्र किए बिना ये सफर अधूरा रह जाता है। इन दोनों की जुगलबंदी ने आर पार के गीतों को ऐसा जादू बख्शा कि वे आज भी संगीत प्रेमियों की महफिलों की रौनक बने हुए हैं। उसी फिल्म का एक बहुत ही खूबसूरत नगमा हम आपके लिए लेकर आए हैं मोहम्मद रफी साहब और गीता दत्त जी की बहुत ही प्यारी आवाजों में आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर।

मोहम्मद रफी साहब और गीता दत्त जी की आवाजों में नगमा था फिल्म आर पार से। आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर गीत मेरे मनमीत की इस महफिल को लेकर हाजिर हूं मैं, यानी आपका दोस्त फेरोज। तो आप तमाम सुनने वालों का एक बार फिर से स्वागत है, इस्तकबाल है गीत मेरे मनमीत की इस बहुत ही खूबसूरत महफिल में। हिंदी सिनेमा का स्वर्णिम दौर जब हर फिल्म महज मनोरंजन नहीं बल्कि जिंदगी का आईना हुआ करती थी, जब गीत सिर्फ सुने नहीं जाते थे बल्कि दिलों में बस जाते थे और उनकी गूंज बरसों तक लोगों की यादों में महफूज रहती थी। आज की महफिल में हम कुछ ऐसी ही फिल्म का जिक्र करेंगे और अगली जो फिल्म है जिसके बारे में हम बात करेंगे वो है 1955 की एक बेहद कालजयी फिल्म जिसका नाम था श्री 420, जिसने सपनों, संघर्ष, मोहब्बत और इंसानियत की एक ऐसी दास्तान सुनाई कि वो भारतीय सिनेमा के इतिहास में हमेशा के लिए अमर हो गई। इस यादगार फिल्म का निर्देशन और निर्माण किया था भारतीय सिनेमा के शोमैन राज कपूर साहब ने। उनके साथ थी सदाबहार अदाकारा नरगिस और आकर्षक व्यक्तित्व की धनी नादिरा, जिन्होंने अपनी अदाकारी से इस कहानी को एक नई ऊंचाई दी। फिल्म का नायक एक पढ़ा लिखा मगर गरीब नौजवान है जो सपनों की नगरी मुंबई में अपनी तकदीर तलाशने आता है। उसकी मासूमियत, उसके ख्वाब और उसकी जद्दोजहद उस दौर के आम इंसान की कहानी बन जाते हैं। यही वजह है कि श्री 420 आज भी उतनी ही ताजगी और अपनापन महसूस कराती है जितना पहले। तो आइए उसी फिल्म का एक बहुत ही खूबसूरत नगमा हम आपको सुनवाते हैं मुकेश साहब और लता जी की बहुत ही प्यारी आवाजों में, जिसे लिखा है हसरत जयपुरी साहब ने और बहुत ही खूबसूरत संगीत से संवारा है शंकर जयकिशन साहब ने।

श्री 420 का यह नगमा था मुकेश साहब और लता जी की बहुत ही प्यारी आवाजों में आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर गीत मेरे मनमीत की दिलकश महफिल में। हिंदी सिनेमा के स्वर्णिम दौर की सबसे बड़ी खूबसूरती यही थी कि वहां सादगी ही सबसे बड़ा श्रृंगार हुआ करती थी। किरदार सीधे साधे होते थे मगर उनके जज्बात बेहद गहरे, मोहब्बत में बनावट नहीं बल्कि दिल की सच्चाई झलकती थी। ऐसी ही एक यादगार फिल्म थी जो आई थी 1959 में, उसका नाम था अनाड़ी। मशहूर मारूफ निर्देशक ऋषिकेश मुखर्जी के निर्देशन में बनी इस फिल्म ने अपनी मासूम कहानी और मानवीय संवेदनाओं के दर्शकों के दिलों में एक खास मुकाम बनाया। फिल्म में राज कपूर की सहज अदाकारी और नूतन की सादगी भरी मुस्कान ने प्रेम की ऐसी तस्वीर उकेरी जो आज भी उतनी ही दिलनशी लगती है जितनी पहले थी। वहीं मोतीलाल और ललिता पवार ने अपने प्रभावशाली अभिनय से कहानी को और भी यादगार बना दिया। फिल्म का संगीत अपने आप में एक अनमोल विरासत है। सुरों को अमर बनाया महान संगीतकार जोड़ी शंकर जयकिशन ने, जबकि गीतों में एहसासात के खुशबू घोली शैलेंद्र और हसरत जयपुरी साहब ने। यही वजह है कि अनाड़ी की गीत आज भी दिलों की महफिल में उसी अपनापन के साथ सुने जाते हैं और गुनगुनाए भी जाते हैं। यह फिल्म वर्ष 1959 की सबसे अधिक सफल फिल्मों में शुमार हुई और इसकी लोकप्रियता ने साबित कर दिया कि सच्ची कहानियां और सच्चे जज्बात कभी पुराने नहीं होते। उसे फिल्म का एक बेहद खूबसूरत नगमा लता जी और मुकेश साहब की बहुत प्यारी आवाजों में आपके लिए गीत मेरे मनमीत की इस दिलकश महफिल में।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की यात्रा पूरी कर स्वदेश रवाना हो गए हैं। न्यूजीलैंड से स्वदेश लौटते हुए श्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों के सामने अवसरों की अपार संभावनाएं हैं और वे अपनी साझेदारी को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए प्रतिबद्ध हैं।
1: भारत और न्यूजीलैंड के रिश्ते में यादें भी हैं, दोस्ती भी है, वैल्यूज भी है और एक कमिटमेंट भी है। भारत न्यूजीलैंड की यही वाका एक नई यात्रा पर निकलने के लिए तैयार है। हमारे सामने अवसरों से भरा खुला समुद्र है, हवाएं हमारे साथ है, समंदर की विशाल लहरें हमारे साथ है, इच्छा शक्ति का नीला आसमान हमारे साथ है। पाने को काफी कुछ है और मैं जानता हूं हम सफल होंगे।
0: पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य के लिए समान नागरिक संहिता विधेयक के मसौदे की जांच के लिए 9 सदस्यीय समिति का गठन किया है। सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजना प्रसाद देसाई इसकी अध्यक्ष होंगी। मेघालय के पूर्व राज्यपाल तथागत राय भी समिति के सदस्यों में शामिल हैं। 2 जुलाई को मंत्रिमंडल की बैठक में समान नागरिक संहिता विधेयक के मसौदे की जांच के लिए समिति गठित करने का निर्णय लिया गया था। एक राष्ट्र एक चुनाव पर संयुक्त संसदीय समिति के अध्यक्ष सांसद पीपी चौधरी ने कहा कि लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराने से शासन व्यवस्था मजबूत होगी, खर्च कम होगा और देश की अर्थव्यवस्था को लाभ होगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने विशाखापत्तनम में स्वदेशी स्टिल्थ फ्रिगेट INS महेंद्रगिरी को नौसेना के पूर्वी बेड़े में शामिल किया। परियोजना 17A का ये युद्धपोत भारत की बढ़ती समुद्री शक्ति और स्वदेशी रक्षा क्षमता का परिचायक है। इस अवसर पर श्री सिंह ने कहा कि भारत पारंपरिक रक्षा क्षमताओं और उन्नत प्रौद्योगिकियों दोनों को मजबूत करके एक मजबूत, आत्मनिर्भर और भविष्य के लिए तैयार रक्षा बल का निर्माण कर रहा है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने तेलंगाना के संगारेड्डी जिले के नंदीगामा क्षेत्र में स्थित मेधा रेल कोच कलपुर्जा निर्माण सुविधा स्थल का निरीक्षण किया। 375 एकड़ भूभाग में फैली ये विशाल औद्योगिक इकाई रेलवे के आधुनिकीकरण में महत्वपूर्ण प्रगति को प्रदर्शित करती है। अपनी यात्रा के दौरान श्री वैष्णव ने मेक इन इंडिया पहल के एक महत्वपूर्ण हिस्से के रूप में निजी क्षेत्र के उद्यमों को बढ़ावा देने संबंधी सरकार की वचनबद्धता पर बल दिया। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन के अंतर्गत हैदराबाद भारत के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र की प्रगति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। श्री वैष्णव ने कहा कि भारत के विकास का अगला चरण आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण और उन्नत बुनियादी ढांचे पर आधारित होगा, जो विकसित भारत 2047 के लक्ष्य के अनुरूप है। अरुणाचल प्रदेश के वाणिज्य और उद्योग मंत्री न्यातो दुकाम ने बंदरदेवा स्थित रोगोंगे मेगा फूड पार्क के प्रशासनिक भवन का उद्घाटन किया। उन्होंने फूड पार्क के अत्याधुनिक बुनियादी ढांचे का निरीक्षण भी किया। प्रधानमंत्री संग्रहालय और पुस्तकालय ने दिल्ली के उच्च माध्यमिक विद्यालयों के विद्यार्थियों के लिए जन से गण तक नामक नई संग्रहालय आधारित शिक्षण पहल का शुभारंभ किया है। इसका उद्देश्य युवाओं को भारत के संविधान और लोकतांत्रिक मूल्यों को बेहतर ढंग से समझने में मदद करना है। दक्षिण की कोकिला के रूप में प्रसिद्ध दिग्गज पार्श्व गायिका एस जानकी का कल कर्नाटक के मैसूर में 88 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उन्हें 4 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, 33 राज्य पुरस्कार और पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। साउथहैम्पटन में खेले गए 5वें और अंतिम T20 क्रिकेट मुकाबले में इंग्लैंड ने भारत को 56 रन से हराकर 5 मैचों की श्रृंखला 4-0 से अपने नाम कर ली है। इंग्लैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत के सामने 258 रन का लक्ष्य रखा। जवाब में भारतीय टीम निर्धारित 20 ओवर में 8 विकेट पर 201 रन ही बना सकी। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

पानी पे लिखी कहानी। आज इस कार्यक्रम में आइए सुनते हैं कहानी घरौंदा। दिल्ली दिल्ली दिल्ली जी, दिल वालों की दिल्ली। दिल्ली हर खासो आम का शहर, गालिब की गजलों का शहर और मंदिर की घंटियों का शहर, मेट्रो में चलती जिंदगियों का शहर, कनॉट प्लेस की शोखी का शहर। दिल्ली जिसकी चौड़ी सड़कें, तंग गलियों, शोर जी, उम्मीदों की दिल्ली, हौसलों की दिल्ली, तीखी चाट की दिल्ली, सत्ता के गलियारों की दिल्ली। और इस सपनों की दिल्ली में मोहन भी अपनी जोरू के साथ रोजगार की तलाश में चला आया। गांव के कई परिवार गांव छोड़कर दिल्ली चले आए थे, करते भी क्या, मुट्ठी भर जमीन हर साल बाढ़ के पानी में डूब जाती। जब से बांध बना था वो जमीन भी जाती रही। जमीन के बदले सरकार ने मुआवजा तो दिया था, पर बैठ कर आखिर कब तक खाते, उसे जिंदगी तो नहीं कट सकती थी ना। धीरे धीरे पूंजी भी खत्म होने लगी। आखिर मोहन ने जी कड़ा किया और अम्मा बाबूजी से दिल्ली जाने की इजाजत ले ली। पर उसकी फुलवा ने तो रो रो कर मानो जी हलकान कर लिया हो।

अब फुलवा का बलवा उसकी भावनाओं को समझ ही नहीं पा रहा था। तब अम्मा जी ने जी कड़ा करके फुलवा को मोहन के साथ विदा कर दिया। आखिर इकलौते बेटे को अकेले परदेश कैसे भेज सकती थी। कंधों पर सपनों और उम्मीदों का बोझ लिए वो दिल्ली चला आया था। वो दिन था और आज का दिन। मोहन और फुलवा को गांव की बहुत याद आती थी। कितनी बार सोचते गांव वापस लौट जाएं। अम्मा और बाबूजी की बहुत याद आती थी और घर की टूटी दीवारें, टपकती छत बार बार आंखों के सामने आ जाती। कुछ साल और कमा लेंगे तो अम्मा की मोतियाबिंद का ऑपरेशन और घर की मरम्मत भी करवा लेंगे। ऐसा ही सोचा था मोहन और फुलवा ने। मोहन और फुलवा को यहाँ रहते रहते बरसों बीत गए थे। जीवन में खेती के सिवा कुछ काम ही नहीं किया। अनजान शहर में कोई काम देता भी तो कैसे देता। फिर भी कहते हैं ना, दिल्ली दिल वालों की है। मोहन ने ठेकेदार के हाथ पैर जोड़कर बेलदारी का काम शुरू कर दिया। खेत में पसीना बहाने वाले शरीर आज भरी दोपहरी में सीमेंट की बोरियां उठा रहे थे। अनाज उगाने वाले हाथ आज ईंट उठा रहे थे। शुरू शुरू में तो बहुत दिक्कत हुई इस अनजान शहर में। अपनी फुलवा को छोड़े तो छोड़े कहां। तब फुलवा ने कहा था,

फुलवा, फुलवा के बारे में तो आपको ठीक से बताया ही नहीं। मध्यम कद, गठीला बदन, गेहुआ रंग, तेल लगे बालों के बीच लंबी सी मांग जिसमें पाव भर पीला सिंदूर, माथे पर चवन्नी बराबर गोल बिंदी और हाथ में भर भर की चूड़िया और कमर में अम्मा की शादी में चढ़ाई चांदी की करघनी चमकती रहती थी। बड़ी कर्मठ और एक बार

0: ठान ले तो फिर किसी की नहीं सुनती थी फुलवा। मोहन कुछ समझ पाता उससे पहले ही फुलवा ने छींटदार साड़ी के पल्लू को समेटकर कमर में खोस लिया और मोहन के कमछे को गोल गोल घुमाकर अपने सर पर रखकर ठेकेदार से कहा,
1: ये ठेकेदार बाबू हम भी काम करब।
0: ठेकेदार ने एक अजीब सी निगाह से फुलवा को देखा। फुलवा एक क्षण को असहज सी हो गई थी और मोहन बिल्कुल फुलवा की ढाल बन के उसके आगे खड़ा हो गया। वो जानता था ना इस तरह के लोगों के बारे में, बस उसकी फुलवा ही कहां सुनती थी किसी की। और वो दिन था और आज का दिन। वर्षों बीत गए थे उन्हें इस अनजान शहर में, जहां कभी कोई इमारत बनती दोनों अपना डेरा डंडा उठाए वहां पहुंच जाते। छोटी सी गृहस्थी थी उनकी, गिनती के चार बर्तन और कपड़े। फुलवा थी तो बड़ी गुणी, वहीं साइट पर पड़े ईंटों को गीली मिट्टी से जोड़कर छोटी सी झोपड़ी बना लेती और मोहन काली पीली पन्नी का जुगाड़ कर छत छवा लेता और ढलाई के लिए आई लकड़ी के पटरों से दरवाजा और फटी साड़ी को तुरपन करके पर्दे बन जाते। बस गृहस्थी बस जाती। फुलवा कहीं भी रहे पर अपने संस्कार धर्म कर्म कभी नहीं भूलती। हर साइड पर झोपड़ी के बाहर तुलसी का चौरा उसके साथ रहता। मुंह अंधेरे उठकर तुलसी माता का चौरा लीपना और सुबह शाम दिया जलाना उसकी आदत में शुमार था। समय पंख लगाए उड़ा जा रहा था। पिंकी और ननकू यहीं पैदा हुए थे। पिंकी दिमाग से बहुत तेज थी और फुलवा की बड़ी इच्छा थी कि दोनों बच्चों को पढ़ाए लिखाए, पर इस बड़े शहर में पेट भरने के लिए पैसा कमा ले वही बहुत था। पिंकी के लिए कॉपी और पेंसिल जुटाना संभव नहीं था, पर फुलवा ने हार नहीं मानी। उसने उसका भी जुगाड़ कर लिया। हारना तो मानो फुलवा ने सीखा ही नहीं था। वैसे भी इंसान अगर परिस्थितियों से हार जाए तो फिर वो इंसान कैसा। फुलवा की वजह से ही मोहन की अम्मा का मोतियाबिंद का ऑपरेशन हो पाया था। मोहन जब भी अपनी परिस्थितियों के आगे झुक जाता, थक जाता, हारने लगता, फुलवा उसकी ढाल बनकर बिल्कुल उसके सामने खड़ी रहती और उसे हौसला देती।

रात को जब शहर रोशनी में नहा जाता तो फुलवा की झोपड़ी भी कुप्पी की रोशनी और चूल्हे के अंगार की रोशनी में दमक उठती। चूल्हे की आग में सिकती रोटियों की गमक से सारी झोपड़ी सौंधी खुशबू से महक उठती थी। दिन भर ईंटें उठाने से चोटिल हुए हाथ आटे की लोई को बड़ी कलाकारी से पीट पीट कर हथेलियों पर बड़ा कर देते। चांद सी गोल गोल रोटियों को थाली में रखते ही पिंकी नमक के डब्बे की ओर भागती और मोहन प्याज को जमीन पर रख अपनी मजबूत हथेलियों से ठप की आवाज से जोर से दो टुकड़े में कर देता। कुल जमा 7 रोटियां ही बन पाती, 2 मोहन की, 2 फुलवा की, 2 पिंकी की और 1 ननकू की। और इन गिनती की रोटियों के साथ 7 तक की गिनती भी पिंकी को आ गई। मोहन चुपचाप सिर झुकाए माँ बेटी की बहस को देखता रहता और खाना खाता रहता। जानता था रोज रोटी 7 ही बनती है, पर फुलवा पिंकी की बात पर मुस्कुरा देती। वो पिंकी का मन रखने के लिए रोज ऐसा ही कहती और आज भी कुछ ऐसा ही हुआ था।

पिंकी के सवाल को सुन फुलवा की आंखें भीग गई। आंचल के कोर से आंसुओं को पोंछती हुई फुलवा की नजर मोहन से टकरा गई। मोहन समझता था उसकी आंखों में आंसुओं का कारण, पर वो भी लाचार था। कभी कभी सोचता था ऐसे सपने देखने से क्या फायदा जो पूरे ना हो सके। सोचा था गांव का मकान पक्का करवा लेंगे, कम से कम बुढ़ापे के लिए एक पक्का घर तो हो ही जाएगा। अम्मा भी कितनी बार कह चुकी थी घर जगह जगह से टपकता है, जाड़े और बारिश में बहुत दिक्कत होती है, पर बस सुनकर रह जाता, कुछ कर ही नहीं पाता। और यहाँ खाने का ठिकाना नहीं था, पक्के घर की कैसे सोच सकता था वो। अचानक झोपड़ी में सन्नाटा सा छा गया। रात गहराती जा रही थी, मोहन चुपचाप लेटा हुआ था। आज मोहन को फिर काम नहीं मिला था, फुलवा ने आज फिर बच्चों को आटा घोल कर पिलाया था। मोहन चुपचाप था, भीतर एक गहरा शोर भरा हुआ था। मोहन ने लोटा भर पानी पीकर भूख की आग को शांत करने की बहुत कोशिश की। वो सोने की कोशिश कर रहा था, पर भूखे पेट नींद आती भी कैसे। नींद ना जाने कहां उसका हाथ

उड़ाकर दूर कहीं छिप गई थी। बिस्तर मानो चुप सा रहा था। वैसे भी बिस्तर के नाम पर था ही क्या, फुलवा ने सीमेंट की प्लास्टिक की बोरियों को जोड़ जोड़ कर नीचे बिछा दिया था और अपनी फटी पुरानी साड़ियों को जोड़कर गठरी सी बनाई थी, जिसे वो बिस्तर के रूप में प्रयोग लाती। और पिंकी, ननकू और मोहन के फटे पुराने कपड़ों को झोले में भरकर तकिया बना लिया था। आज ना जाने क्यों मोहन को गांव की बहुत याद आ रही थी। वो पीपल का पेड़, खेत खलियान, बड़े हनुमान जी का मंदिर, पोखरा और अम्मा के हाथ की बाजरे की रोटी। अम्मा के हाथ की बाजरे की रोटी और लहसुन मिर्च की चटनी खाए हुए कितने दिन हो गए थे। चूल्हे की आग की तपिश में सिकती सौंधी सौंधी रोटी की सुगंध भूख को और बढ़ा देती। अम्मा बाबूजी को याद कर मोहन का मन भारी हो गया था। घर को पक्का कराने का सपना सपना ही बनता जा रहा था। कभी कभी मोहन सोचता, अम्मा से जो वादा किया है क्या वो कभी पूरा कर पाएगा। पता नहीं कब उसकी ये इच्छा पूरी होगी। शाम से ही मौसम कुछ ठीक नहीं लग रहा था। आसमान में काले बादल छाए हुए थे और रह कर बिजली चमक रही थी।

0: को सीने से चिपका लिया, जैसे कोई हिरनी शिकारी के डर से अपने बच्चों को छिपा लेती है। तभी एक चूहा उसके पैर के ऊपर से गुजर गया और मानो बस उसकी चीख से निकल गई हो।
1: ए जी, कहां हमार कभी आपन घर होई? पक्का घर जहां ये चूहन ये बारिश के नौबत ही ना आई। ये चूहन बहुत नरक ही है यहाँ। कैसो कैसो तो करके लाला के हाथ पांव जोड़ के कल ही आटा उधार मांग के लायल रहीन। सारी पन्नी काट दीहीन, सब आटा छिटाए गलवा। ऊपर से ये बारिश और आफत किन्हा, चूहा और चिटियन के घरन में पानी घुस जाई।
2: ठीक है कहा दबाहू।
0: झोपड़ी में एक गहरा सन्नाटा पसर गया। झोपड़ी के एक कोने में ढिबरी जलती रही और उसकी रोशनी में मोहन और फुलवा चुपचाप एक दूसरे को देखते रहे। कहने को उनके पास कुछ नहीं था, शब्द मानो थे ही नहीं। फुलवा मोहन के नजदीक सरक आई। एक ही तकिया था जिस पर पिंकी सो रही थी। मोहन ने धीरे से अपनी बाहें फैला दी और फुलवा ने उसे तकिया समझकर उस पर अपना सर टिका दिया। उनका ये प्यार वाकई में बहुत प्यारा था।

0: की आंखें लगातार आसमान को घूर रही थी, मानो मन में घुमड़ते सवालों का जवाब पूछ रही हूँ। फुलवा ने एक गहरी सांस ली। काश हमारा भी घर होता। फुलवा की आंखों में आंसू आ गए। मोहन की बाहें भी भीग गईं। आज सिर्फ उनकी आंखें ही नहीं, उनका दिल भी रो रहा था। कैसी किस्मत लेकर पैदा हुए हैं, अपने लिए, अपने बच्चों के लिए एक छत ही तो चाहिए थी, और क्या, और तो कुछ भी नहीं।
1: एक बात बतावा, का हमार आपन मकान नहीं बन सकत? हाँ,
2: पैसा कहाँ से लाएं महवा?
1: गाढ़े बगत के लिए तू जो थोड़ा पैसा बचा के रखल रहू, और हमार अम्मा तोहार अम्मा जो बिहाय में हमको चांदी के हसली और करधन चढ़ायल रही, ओसे काम ना चली।
0: फुलवा की आंखों में उम्मीद के तारे टिमटिमाने लगे और मोहन फुलवा के मासूम चेहरे को देखकर मुस्कुरा दिया।
2: धत पगली, इतने पैसा से का होइल बा? मकान बनाई खातिर बहुते पैसा चाहिए ना?
1: हमार तो किस्मत ही खराब बा।
0: मोहन ने गहरी सांस ली। फुलवा ने निराशा से अपनी गर्दन झुका दी। उसके चेहरे पर मानो दर्द उभर आया। धीरे धीरे वो दर्द पूरी झोपड़ी में पसर गया और झोपड़ी में गहरा सन्नाटा छाया हुआ था। दोनों चुपचाप एक दूसरे को देखते रहे। तभी आसमान से बारिश की मोटी मोटी बूंदें गिरने लगी, मानो मोहन के दुख से दुखी होकर उसकी भी आंखें भीग गई हों। मोहन और फुलवा हड़बड़ाकर उठ गए। बच्चे नींद में गुनगुनाने लगे। बारिश तेज होने लगी। धीरे धीरे

मोहन और फुलवा बच्चों के साथ पूरी रात वहीं टपरी के नीचे खड़े रहे। चारों तरफ पानी ही पानी। मोहन की झोपड़ी में भी घुटनों तक पानी घुस गया था। पानी की तेज धार और हवा से काली पन्नी पूरी तरह से फट चुकी थी। मिट्टी का चूल्हा और लकड़ी जलमग्न हो गई थी। तुलसी मैया पानी की तेज धार से एक ओर झुक सी गई थी और फुलवा की आंखों से आंसू टपक रहे थे। कैसे तिनका तिनका जोड़कर गृहस्थी बनाई थी। पिंकी भी बिलबिला गई, भूख से नहीं दर्द से।

0: शिवा ने निराशा से मोहन की ओर देखा, जिसे पूछना चाह रही हो अब क्या होगा। तभी मोहन को कुछ ख्याल आया। मोहन की आंखों में सवाल तैर रहे थे। मोहन को कुछ ख्याल आया।
1: फुलवा तनी फोनवा ला के देलबा, देखी किशनवा कहाँ भाई, हो सकत है ओकरा पास रहन के ठिकान मिल जाए, किशनवा का नंबर तनी दे दे।
0: मोहन की आंखों में सवाल तैर रहे थे। फुलवा ने ननकू को गोदी से नीचे उतारा और कपड़ों की गठरी से एक डायरी निकाल कर मोहन के हाथों में रख दी।
1: याद बका
2: तो नंबर मिलावा हम बोलत है 9415।
1: हेलो हेलो किशन।
3: राम राम भैया, सब ठीक है ना? ये वक्त फोन कैसे करे? बाल बच्चा और भौजी सब ठीक है ना?
1: अहो किशन, यहाँ बड़ा तेज पानी बरसत बाहो, सारी रात बरसा हो, बड़े पानी झोपड़िया में घुस गई, तुहार तो पास जगह हो तो हमरा अपन परिवार के ले आई ना, हमारा समझ में ना आवत गई कहाँ जाये ये घड़ी लेकर के हो।
3: हम तो गांव आए हैं, वहाँ होते तो तुहार मदद जरूर करत।
1: गांव गांव चल गई, घर में सब ठीक बनो?
3: हमार मेहरारू का नवा महीना चल रहा है, अस्पताल भर्ती कराए हैं और प्रधान जी भी फोन करे रहे, आवास का पैसा आ गई है, तुहार खाते में भी देखा पैसा आयल हुई, तो के भी दस्तखत करे के जाए के पड़ी।
1: का कहो हो? सच में?
2: सच बात है।
3: हाँ बिल्कुल सच। मोहन भैया, हम गरीबन का सहारा तो भगवान ही है, हम तो कभी सोचले भी ना रही कि हम गांव में पक्का घर बनवा पाईब, पर अब आवास योजना की मदद से हमरो सर पर भी छत हुई, बारिश से गर्मी से ठंड से बचाव हुई। भैया तू भी जल्दी से जल्दी गांव आकर दस्तखत करा और आवास का पैसा से पक्का घर बनवा ला।
1: जनत फुलवा, हमारा आवास के सरकार पैसा दे बड़े।
2: सची में?
1: किशनवा के फुलवा आये बड़े ना, आवास के पैसा आ गए बड़े, हम घर चले।
2: का सचमुच आवास का पैसा हमें मिली? हमरा तो अपन कान पर विश्वास न हो रहा ननगू के बापू, कहीं सब एको सपना था ना बा कि जो हाथ अब तक दूसरे के घर बनावत रही वो अब अपन घर बनाई। अब पिंकी और ननकू भी ठंड में और बरसात में बुखार से बचल रही और हम लोग भी अपन घर में इज्जत के जिंदगी जी। अब अपन घर, अपन पक्का घर।
0: मोहन को तो अपने कानों पर विश्वास ही नहीं हो पा रहा था, वो कागज भरकर तो मानो भूल ही गया था और आज आज उसका सपना पूरा होने जा रहा था, वो भी पक्के मकान का। अब वो भी पक्के मकान में रह पाएगा और अपने अम्मा के सपनों को पूरा कर पाएगा। उसकी आंखों में आंसू आ गए, ये आंसू खुशी के आंसू थे।
4: पिपरा के पटुआ शरीर के डोले मनुआ कि हियारा में उठत हिलो, अरे पुरुआ के झोंकवा में

0: छोटा सा घर, उनका अपना घर।
1: तो दोस्तों ये थी कहानी घरौंदा, और इसी के साथ कार्यक्रम पानी पर लिखी कहानी को समेटने की इजाजत दीजिए। रश्मि कुकरेती आपको कहती है नमस्कार।

0: कुछ है और मैं जानता हूँ हम सफल होंगे।
1: पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य के लिए समान नागरिक संहिता विधेयक के मसौदे की जांच के लिए 9 सदस्यीय समिति का गठन किया है। सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई इसकी अध्यक्ष होंगी। मेघालय के पूर्व राज्यपाल तथागत राय भी समिति के सदस्यों में शामिल हैं। 2 जुलाई को मंत्रिमंडल की बैठक में समान नागरिक संहिता विधेयक के मसौदे की जांच के लिए समिति गठित करने का निर्णय लिया गया था। एक राष्ट्र एक चुनाव पर संयुक्त संसदीय समिति के अध्यक्ष सांसद पीपी चौधरी ने कहा कि लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराने से शासन व्यवस्था मजबूत होगी, खर्च कम होगा और देश की अर्थव्यवस्था को लाभ होगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने विशाखापत्तनम में स्वदेशी स्टील्थ फ्रिगेट INS महेंद्रगिरी को नौसेना के पूर्वी बेड़े में शामिल किया। परियोजना 17A का ये युद्धपोत भारत की बढ़ती समुद्री शक्ति और स्वदेशी रक्षा क्षमता का परिचायक है। इस अवसर पर श्री सिंह ने कहा कि भारत पारंपरिक रक्षा क्षमताओं और उन्नत प्रौद्योगिकियों दोनों को मजबूत करके एक मजबूत आत्मनिर्भर और भविष्य के लिए तैयार रक्षा बल का निर्माण कर रहा है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने तेलंगाना के संगारेड्डी जिले के नंदीगामा क्षेत्र में स्थित मेधा रेल कोच कलपुर्जा निर्माण सुविधा स्थल का निरीक्षण किया। 375 एकड़ भूभाग में फैली ये विशाल औद्योगिक इकाई रेलवे के आधुनिकीकरण में महत्वपूर्ण प्रगति को प्रदर्शित करती है। अपनी यात्रा के दौरान श्री वैष्णव ने मेक इन इंडिया पहल के एक महत्वपूर्ण हिस्से के रूप में निजी क्षेत्र के उद्यमों को बढ़ावा देने संबंधी सरकार की वचनबद्धता पर बल दिया। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन के अंतर्गत हैदराबाद भारत के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र की प्रगति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। श्री वैष्णव ने कहा कि भारत के विकास का अगला चरण आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण और उन्नत बुनियादी ढांचे पर आधारित होगा, जो विकसित भारत 2047 के लक्ष्य के अनुरूप है। अरुणाचल प्रदेश के वाणिज्य और उद्योग मंत्री न्यातो दुकाम ने बंदर देवा स्थित रोगोंगे मेगा फूड पार्क के प्रशासनिक भवन का उद्घाटन किया। उन्होंने फूड पार्क के अत्याधुनिक बुनियादी ढांचे का निरीक्षण भी किया। प्रधानमंत्री संग्रहालय और पुस्तकालय ने दिल्ली के उच्च माध्यमिक विद्यालयों के विद्यार्थियों के लिए जन से गण तक नामक नई संग्रहालय आधारित शिक्षण पहल का शुभारंभ किया है। इसका उद्देश्य युवाओं को भारत के संविधान और लोकतांत्रिक मूल्यों को बेहतर ढंग से समझने में मदद करना है। दक्षिण की कोकिला के रूप में प्रसिद्ध दिग्गज पार्श्व गायिका एस जानकी का कल कर्नाटक के मैसूर में 88 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उन्हें 4 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, 33 राज्य पुरस्कार और पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। साउथहैम्पटन में खेले गए 5वें और अंतिम T20 क्रिकेट मुकाबले में इंग्लैंड ने भारत को 56 रन से हराकर 5 मैचों की श्रृंखला 4-0 से अपने नाम कर ली। इंग्लैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 3 विकेट पर 257 रन बनाए और भारत के सामने 258 रन का लक्ष्य रखा। जवाब में भारतीय टीम निर्धारित 20 ओवर में 8 विकेट पर 201 रन ही बना सकी। इंग्लैंड के जॉस बटलर को उनके शानदार प्रदर्शन के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर गीत सुहाने लेकर आपके साथ हूं मैं जयती। सभी सुनने वालों को हमारा प्यार भरा नमस्कार। और गीत सुहाने में जो पहला गीत आप सुनेंगे आवाज है किशोर कुमार की और फिल्म का नाम है आराधना।

जब संसार निद्रा में डूब जाता है, आकाश अपना प्राचीन ग्रंथ खोलता है। उसके पहले पृष्ठ पर बादलों की चलती हुई लिपि अंकित होती है, दूसरे पृष्ठ पर सितारों की उजली वर्णमाला। एक लिखता है, बहना ही जीवन है, दूसरा जोड़ देता है, टिके रहना भी उतना ही आवश्यक है। दोनों मिलकर समय का एक ऐसा शास्त्र रचते हैं जिसे किसी विद्यालय में नहीं पढ़ाया जाता, पर हर संवेदनशील हृदय कभी न कभी पढ़ी लेता है। रात्रि उस ग्रंथ की संरक्षिका है, वह किसी से शुल्क नहीं लेती, किसी का नाम नहीं पूछती, केवल इतना चाहती है जो ऊपर देखे वो भीतर भी देखना सीख जाए। इसलिए जब अगली बार बादल सितारों के बीच से गुजरे, उन्हें केवल बदलती आकृतियों की तरह मत देखना, वे जल और ज्योति का शाश्वत संतुलन है। इसी संतुलन पर ऋतुएं टिकी हैं, इसी पर यात्राएं, इसी पर स्वप्न और इसी पर मनुष्य का वो विश्वास जो हर नए प्रभात से पहले रात्रि के आकाश में जन्म लेता है। आप सुन रहे हैं गीत सुहाने, और अगला गीत फिल्म का नाम है जीने की राह। आवाज है आशा भोसले, उषा मंगेशकर और हेमलता की।

रजनी ने आज क्षितिज से क्षितिज तक नील पट बिछा दिया था। उस पर बादलों ने रूप बदलते हुए अनगिन आख्यान रचे और सितारों ने बिना किसी शोर के उन आख्यानों में अर्थ भर दिए। एक बादल दूर समुद्र की यात्रा से लौटा था। उसकी देह में लहरों का नमक था, नदियों की स्मृतियां थीं, पहाड़ों की थकन थी, धान की बालियों की प्रतीक्षा थी। एक सितारा करोड़ों वर्षों से उसी दिशा में टंगा था, किंतु उसका प्रकाश हर रात नया प्रतीत होता था। वो जानता था स्थिर रहकर भी नवीन बना जा सकता है। रात ने दोनों को एक ही आकाश में स्थान दिया। तभी संसार ने समझा, परिवर्तन और स्थिरता प्रतिद्वंदी नहीं, एक दूसरे की पूरक धाराएं हैं। धरती के वृक्ष ऊपर देख मुस्कुराए, मानो कह रहे हों, जो ऊपर इतना विशाल होकर भी एक दूसरे को जगह दे सकते हैं, उन्हीं से संतुलन का

आर्ट सीखना चाहिए। जब प्रातः की आभा निकली, ना कोई विजेता था ना कोई पराजित, केवल आकाश था जो सबको समेट लेने के कारण और भी विराट हो गया था। और अगला गीत तलत अजीज की आवाज में, फिल्म उमराव जान से।

तुम यूं ना आना कि केवल द्वार की सांकल भर हिले, तुम यूं उतरना जैसे सूखे कंठ में पहली बूंद घुले। जब राहें रिक्त मिले तब भी अपना नेह निभाना, और यदि दिशाएं व्यस्त रहें तब भी मन का दीप जलाना। आना आना वैसे जैसे निर्जन वन में कोयल का पहला स्वर फूटे, जैसे नीरव घाटी में दूर कहीं निर्जर का संगीत छूटे। आना आना वैसे जैसे बीज के भीतर हरित स्वप्न आकार संजोते हैं, जैसे धरती के अंतर में अदृश्य अंकुर सांस पिरोते हैं। आना आना वैसे जैसे दीपक की लौ तेल से अपना नाता जोड़ती है, जैसे चंदन की गंध स्पर्श बिना भी मन मोड़ती है। मैं प्रतीक्षा को विलाप नहीं बनने दूंगी, विश्वास की डोरी किसी संशय पर न तानूंगी। मेरे नयनों ने अनगिन ऋतुएं बदली देखी, पर आशा की चुनर कभी धूल नहीं होने दी। यदि पग थक जाएं तो पल भर विश्राम कर लेना, किंतु अपनापन राहों में कहीं न धर देना। मुझे वैभव का स्वर्ण मुकुट नहीं चाहिए, बस स्नेह की एक रेखा जीवन भर पर्याप्त रहे। आना आना वैसे जैसे शिशु की हंसी घर के आंगन को भर देती है, जैसे तुलसी पर गिरती ओस प्रभात को पावन करती है, जैसे नदी सागर का पता रखती है, जैसे नभ हर संध्या पक्षियों को घर देता है। मैं तुम्हें बंधन का निमंत्रण नहीं लिखती, मैं तो केवल सहचर्य की सरिता रचती हूँ, जहाँ आत्माएं एक दूसरे का भार नहीं एक दूसरे का आधार बनती हैं, जहाँ शब्द कम पड़ जाएं पर दृष्टियां अर्थ कहती हैं। यदि कभी दूरी अपने वृत्त बड़े कर ले तो स्मृति की रेशमी डोरी अचानक मत तोड़ देना। यदि जीवन असंख्य दायित्वों के भार से भर जाए तो स्नेह का एक अक्षर मेरे हिस्से छोड़ देना। आना वैसे जैसे नदी अपने सागर का पता रखती है, जैसे नभ हर संध्या पक्षियों को घर देता है।

ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर, और गीत सुहाने में आपके साथ हूं मैं जयती। अगला गीत लता मंगेशकर की आवाज में, फिल्म का नाम है मधुमती।

आप सुन रहे हैं गीत सुहाने, साथ हूं मैं जयती। और अगला गीत फिल्म का नाम है जब प्यार किसी से होता है, आवाज है मोहम्मद रफी की। तो आइए सुनते हैं ये गीत।

और वक्त आ चला है कि आपको याद दिला दें कि अब से थोड़ी ही देर बाद एफएम गोल्ड पर आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार। चलते चलते आपको ये भी बता दें कि अब जो जिस गीत के साथ अभी हम आपको छोड़े जा रहे हैं, उस फिल्म का नाम है हम जोली, आवाज है मोहम्मद रफी और आशा भोसले की। साथ ही हम आपको ये भी याद दिला दें कि हमारी और आपकी मुलाकात होगी 2:10 पर, कार्यक्रम होगा रात सुरमई। आप सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अपर्णा सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की यात्रा पूरी कर स्वदेश रवाना हो गए हैं। न्यूजीलैंड से स्वदेश लौटते हुए श्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों के सामने अवसरों की अपार संभावनाएं हैं और वे अपनी साझेदारी को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए प्रतिबद्ध हैं।
1: भारत और न्यूजीलैंड के रिश्ते में यादें भी हैं, दोस्ती भी है, वैल्यूज भी है और एक कमिटमेंट भी है। भारत न्यूजीलैंड की यही वाका एक नई यात्रा पर निकलने के लिए तैयार है। हमारे सामने अवसरों से भरा खुला समुद्र है, हवाएं हमारे साथ है, समंदर की विशाल लहरें हमारे साथ है, इच्छा शक्ति का नीला आसमान हमारे साथ है।

शक्ति और स्वदेशी रक्षा क्षमता का परिचायक है। इस अवसर पर श्री सिंह ने कहा कि भारत पारंपरिक रक्षा क्षमताओं और उन्नत प्रौद्योगिकियों दोनों को मजबूत करके एक मजबूत, आत्मनिर्भर और भविष्य के लिए तैयार रक्षा बल का निर्माण कर रहा है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने तेलंगाना के संगारेड्डी जिले के नंदीगामा क्षेत्र में स्थित मेधा रेल कोच कलपुर्जा निर्माण सुविधा स्थल का निरीक्षण किया। 375 एकड़ भूभाग में फैली ये विशाल औद्योगिक इकाई रेलवे के आधुनिकीकरण में महत्वपूर्ण प्रगति को प्रदर्शित करती है। अपनी यात्रा के दौरान श्री वैष्णव ने मेक इन इंडिया पहल के एक महत्वपूर्ण हिस्से के रूप में निजी क्षेत्र के उद्यमों को बढ़ावा देने संबंधी सरकार की वचनबद्धता पर बल दिया। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन के अंतर्गत हैदराबाद भारत के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र की प्रगति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। श्री वैष्णव ने कहा कि भारत के विकास का अगला चरण आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण और उन्नत बुनियादी ढांचे पर आधारित होगा, जो विकसित भारत 2047 के लक्ष्य के अनुरूप है। अरुणाचल प्रदेश के वाणिज्य और उद्योग मंत्री न्यातो दुकाम ने बंदरदेवा स्थित रोंगोगे मेगा फूड पार्क के प्रशासनिक भवन का उद्घाटन किया। उन्होंने फूड पार्क के अत्याधुनिक बुनियादी ढांचे का निरीक्षण भी किया। वेनेजुएला में 24 जून को आए भूकंपों में मरने वालों की संख्या बढ़कर 4,333 हो गई। नेशनल असेंबली के अध्यक्ष जॉर्ज रोड्रिक्स ने पत्रकारों से बातचीत में बताया कि प्रभावित लोगों को आवास उपलब्ध कराने का काम अगले सप्ताह से शुरू होगा। भूकंप के कारण लगभग 17,000 लोग बेघर हो गए हैं। इस बीच अधिकारी ने बताया कि मृतकों में से 315 लोगों की अभी तक पहचान नहीं हो पाई है। इस आपदा में 16,740 लोग घायल हुए, जबकि 6,462 लोगों को बचाया गया है। चेक गणराज्य की 21 वर्षीय लिंडा नोस्कोवा ने अपनी ही देश की करोलिना मुचोवा को 6-2, 5-7, 6-3 से हराकर विंबलडन महिला सिंगल्स का खिताब अपने नाम कर लिया है। ये उनका पहला ग्रैंड स्लैम खिताब है। इस ऐतिहासिक जीत के साथ मुचोवा विंबलडन महिला सिंगल्स खिताब जीतने वाली लगातार 4 वर्षों में तीसरी चेक खिलाड़ी बन गई हैं। उनसे पहले मार्केटा वोद्रोसोवा ने 2023 और बारबोरा क्रेजिकोवा ने 2024 में यह प्रतिष्ठित ट्रॉफी जीती थी। साउथम्पटन में खेले गए पांचवें और अंतिम T20 क्रिकेट मुकाबले में इंग्लैंड ने भारत को 56 रन से हराकर 5 मैचों की श्रृंखला 4-0 से अपने नाम कर ली। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर रात सुरमई लेकर आपके साथ हूं मैं जयती। सभी सुनने वालों को हमारा प्यार भरा नमस्कार। रात सुरमई में जो पहला गीत आप सुनेंगे, फिल्म का नाम है बॉबी, आवाज है शैलेंद्र सिंह की।

हर रात एक ऐसा समय आता है जब संसार की गति मंथर पड़ जाती है और केवल आकाश जागता है। उसी बेला में चांद अपनी उजली दृष्टि से धरती पर बिखरे असंख्य जीवनों को देखता है। कोई घर लौट रहा होता है, कोई स्वप्न बुन रहा होता है, कोई उत्तर खोज रहा होता है और कोई स्वयं से मिलने की प्रतीक्षा में होता है। मेरा मन भी उस रात किसी प्रश्न का यात्री था। उसने चांद से कहा, तुम्हारी पूर्णता का रहस्य क्या है? चांद ने उत्तर नहीं दिया। वो प्रतिदिन घटता बढ़ता रहा और उसी परिवर्तन ने मन को समझा दिया, पूर्ण वही है जो परिवर्तन से नहीं डरता, रात्रि की निशब्द नहीं। उसकी गहन व्यापकता में इतना सत्य इतना उज्जवल था कि किसी शब्द की आवश्यकता ही नहीं रही। तब से चांद, जब भी चांद निकलता है, मन उत्तर नहीं खोजता, केवल सीखता है कि अधूरापन भी जीवन का एक सुंदर अध्याय है।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर और रात सुरमई में आपके साथ हूं मैं जयती। रात सुरमई में अब जो गीत आप सुनेंगे, फिल्म का नाम है त्रिशूल, आवाज है लता मंगेशकर और किशोर कुमार की। तो आइए सुनते हैं ये गीत।

0: ใช่
1: मन का पंछी कभी किसी वन में नहीं रहता, उसका बसेरा दृश्य से अधिक अनुभूति में होता है। वो ऋतुओं की भाषा समझता है, पत्तों के बदलते रंग पढ़ता है, पहाड़ों की नीरव नहीं उनकी गंभीर मुद्रा से धैर्य का अर्थ ग्रहण करता है और नदियों से सीखता है रुकना नहीं पर सबको स्पर्श करते हुए आगे बढ़ना। एक दिन उसने आकाश से कहा, मुझे ऊंचाई नहीं चाहिए, मुझे दृष्टि चाहिए। आकाश प्रसन्न हुआ। उसने अपनी अनंतता का एक छोटा सा अंश उस पंछी की आंखों में भर दिया। अब वह किसी शाखा को देखकर केवल पत्तियां नहीं गिनता, वो समझ लेता है कितनी ऋतुओं ने मिलकर उस वृक्ष को वृक्ष बनाया होगा। उसकी उड़ान अब दूरी नहीं नापती, वह अर्थ खोजती है। जो अर्थ तक पहुंच जाए उसे दिशाओं का अभिमान नहीं रहता। मन का पंछी उस दिन पहली बार सचमुच उड़ना सीख गया। मन का पंछी उस दिन पहली बार सचमुच उड़ना सीख गया। मन का पंछी कभी किसी वन में नहीं रहता, उसका बसेरा दृश्य से अधिक अनुभूति में होता है। अगला गीत लता मंगेशकर और उदित नारायण की आवाज में, फिल्म का नाम है दिल तो पागल है।

रात्रि का विस्तार किसी महासागर से कम नहीं था। उसके बीच चांद एक शांत दीप की तरह अपनी दिशा में बढ़ता रहा। मैंने मन को देखा, वो कभी स्मृतियों के तट पर बैठ जाता, कभी कल्पनाओं की नाव बना लेता, कभी भविष्य के क्षितिज तक दौड़ पड़ता। चांद उसे रोकता नहीं था, वो केवल साथ चलता था, मानो कह रहा हो, यात्रा तुम्हारी है, मैं केवल मार्ग का साक्षी हूं। मन ने पहली बार अपने ही भीतर उतरना स्वीकार किया। वहां न कोई पराजय थी, ना कोई विजय, केवल अनुभवों की परतें थीं जिन्होंने उसे आज का स्वरूप दिया था। रात्रि धीरे धीरे आगे बढ़ती रही, चांद अपनी धवल छवि बिखेरता रहा और मन समझ गया, जो स्वयं के अंतरिक्ष को पहचान लेता है, उसे बाहरी आकाश केवल सौंदर्य नहीं, जीवन का शाश्वत संकेत भी प्रतीत होने लगता है। उस रात चांद आकाश में था, पर उसकी वास्तविक उदय मन के भीतर हुआ था। अगला गीत उदित नारायण की आवाज में, फिल्म का नाम है डर।

और वक्त आ चला है आपसे विदा लेने का, पर चलते चलते याद दिला दें आपको कि अब से थोड़ी ही देर बाद यानी 3 बजे एफएम गोल्ड पर आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार। अभी जिस गीत के साथ हम आपको छोड़े जा रहे हैं, फिल्म का नाम है जीना मरना तेरे संग, आवाज है कुमार शानू और अनुराधा पौडवाल की। तो मुझे दीजिए अनुमति, सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अपर्णा सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की यात्रा पूरी कर स्वदेश रवाना हो गए हैं। न्यूजीलैंड से स्वदेश लौटते हुए श्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों के सामने अवसरों की अपार संभावनाएं हैं और वे अपनी साझेदारी को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए प्रतिबद्ध हैं।
1: भारत और न्यूजीलैंड के रिश्ते में यादें भी हैं, दोस्ती भी है, वैल्यूज भी है और एक कमिटमेंट भी है। भारत न्यूजीलैंड की यही वाका एक नई यात्रा पर निकलने के लिए तैयार है। हमारे सामने अवसरों से भरा खुला समुद्र है, हवाएं हमारे साथ है, समंदर की विशाल लहरें हमारे साथ है, इच्छा शक्ति का नीला आसमान हमारे साथ है, पाने को काफी कुछ है और मैं जानता हूं हम सफल होंगे।
0: पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य के लिए समान नागरिक संहिता विधेयक के मसौदे की जांच के लिए 9 सदस्यीय समिति का गठन किया है। सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई इसकी अध्यक्ष होंगी। मेघालय के पूर्व राज्यपाल तथागत राय भी समिति के सदस्यों में शामिल हैं। 2 जुलाई को मंत्रिमंडल की बैठक में समान नागरिक संहिता विधेयक के मसौदे की जांच के लिए समिति गठित करने का निर्णय लिया गया था। एक राष्ट्र एक चुनाव पर संयुक्त संसदीय समिति के अध्यक्ष सांसद पीपी चौधरी ने कहा कि लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराने से शासन व्यवस्था मजबूत होगी, खर्च कम होगा और देश की अर्थव्यवस्था को लाभ होगा।

इंटेलिजेंस, सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण और उन्नत बुनियादी ढांचे पर आधारित होगा, जो विकसित भारत 2047 के लक्ष्य के अनुरूप है। वेनेजुएला में 24 जून को आए दो भूकंपों में मरने वालों की संख्या बढ़कर 4,333 हो गई। नेशनल असेंबली के अध्यक्ष जॉर्ज रोड्रिक्स ने पत्रकारों से बातचीत में बताया कि प्रभावित लोगों को आवास उपलब्ध कराने का काम अगले सप्ताह से शुरू होगा। भूकंप के कारण लगभग 17,000 लोग बेघर हो गए। इस बीच अधिकारी ने बताया कि मृतकों में से 315 लोगों की अभी तक पहचान नहीं हो पाई है। इस आपदा में 16,740 लोग घायल हुए, जबकि 6,462 लोगों को बचाया जा सका। एशियाई अंडर 19 और अंडर 23 मुक्केबाजी चैंपियनशिप में भारत ने जकार्ता में खेले गए क्वार्टर फाइनल मुकाबलों में शानदार प्रदर्शन करते हुए अंडर 19 पुरुष वर्ग में 6 पदक पक्के कर लिए हैं। आदित्य ने 55 किलोग्राम भार वर्ग में फिलीपींस के बरुइस एफ्रेम जॉन को 5-0 से हराया, जबकि 60 किलोग्राम में सिकंदर ने ताजिकिस्तान के शरीफ खोन नूरालियेव को 4-1 से शिकस्त दी। साउथहैम्पटन में खेले गए पांचवें और अंतिम T20 क्रिकेट मुकाबले में इंग्लैंड ने भारत को 56 रन से हराकर 5 मैचों की श्रृंखला 4-0 से अपने नाम कर ली। इंग्लैंड के जॉस बटलर को उनके शानदार प्रदर्शन के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। चेक गणराज्य की 21 वर्षीय लिंडा नोस्कोवा ने अपने ही देश की करोलिना मुचोवा को 6-2, 5-7, 6-3 से हराकर विंबलडन महिला सिंगल्स का खिताब अपने नाम कर लिया। ये उनका पहला ग्रैंड स्लैम खिताब है। इस ऐतिहासिक जीत के साथ मुचोवा विंबलडन महिला सिंगल्स खिताब जीतने वाली लगातार 4 वर्षों में तीसरी चेक खिलाड़ी बन गई हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

दिल की बातें, अनकही बातें और सुरों में घुली हुई मीठी बातें। जी हाँ, नमस्कार, मैं हूँ आपके दोस्त और आपके हम सफर रूपा धवन। स्वागत है आप सभी का आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। आप सुन रहे हैं इस वक्त यानी 3:11 पर अपना पसंदीदा शो हमराही। आज हमराही के सफर में हम और आप मिलकर करेंगे ढेर सारी बातें और सुनेंगे वो सदाबहार युगल गीत जिनमें बातें शब्द ही मोहब्बत की धड़कन बन गया। चलिए इस खूबसूरत से सफर का आगाज करते हैं इस बेहद ही हसीन और चुलबुले नगमे के साथ। फिल्म है बात एक रात की, स्वर रफी जी और आशा जी का।

फिल्म उमर कैद से अभी ये गीत सुना आपने, मुकेश साहब और सुमन कल्याणपुर के स्वर में। क्या बात है, इतना खूबसूरत गीत सचमुच। और ये पुराने गीतों में जो जादू है ना, बातों का जो सलीका था, वो इन गीतों में, और वो इन गीतों को और भी खास बना देता है। सुनते हैं एक और ऐसा ही गीत, खूबसूरत सा, फिल्म 9-2-11 से किशोर साहब और आशा जी की आवाज़ में।

दोस्तों, पुराने दौर के गीतकारों ने बात शब्द को कितने अलग अलग रंगों में पिरोया है। कभी प्यार की शुरुआत में होने वाली मीठी बातें, तो कभी सावन की रातों में होने वाली अधूरी बातें। जब लता दीदी और किशोरदा एक साथ सुर मिलाते थे तो ऐसा लगता था मानो दो हमराही किसी मखमली रास्ते पर चलते हुए एक दूसरे से सुख दुख को बांट रहे हों। आइए बातों की इस कारवां को एक ऐसे गाने की तरफ ले चलते हैं जो रिमझिम बारिश में दो दिलों की बातचीत को अमर कर गया। सुनते हैं एक और लता जी और किशोर साहब की आवाज में यह खूबसूरत सा गीत अजनबी फिल्म से।

0: किसी ने खूब कहा है, जब शब्द कम पड़ जाते हैं तो संगीत बात करता है। लेकिन जरा सोचिए, जब संगीत और शब्द दोनों मिलकर सिर्फ और सिर्फ बातों के हुस्न को बयां करें, तो वो शाम कितनी हसीन हो जाती है। पुराने दौर के युगल गीतों की तो बुनियाद ही बातों पर टिकी थी, कभी गीला शिकवा, कभी मनुहार, तो कभी चुपके से दिल का हाल कह जाना।
1: यूं ही तुम मुझसे बात

0: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। समय हुआ है 3:32 और 46 सेकंड। आप हैं रूपा के साथ हमराही के कार्यक्रम में। तो जनाब, हम बात कर रहे थे फिल्मों में बातों के ऊपर आधारित गीतों की, जिसमें दिल के गिले शिकवे, सारे दिल का हाल शब्दों को बातों के जरिए हुस्न का बयां करना। पुराने दौर के युगल गीतों की तो बुनियाद की बातों पर ही टिकी होती थी, कभी गिला शिकवा, कभी मनोहार, तो कभी चुपके से दिल का हाल कह जाना, जैसे कि इस गीत से जाहिर होता है।
1: ए,
2: अरे
1: चुपके से दिल दे दे,
2: नहीं ते
1: नहीं ते

क्या बात है, सचमुच पुराने गानों में बातों का जो सलीका था वो इन गीतों को और भी खास बना देता था। सुनते हैं एक ऐसा ही गीत, लेकिन जिसमें बातें नहीं अपने दिल के भावों का इजहार किया जा रहा है, और ऐसा लग रहा है कि जैसे कुछ ना कुछ तो जरूर कहा है दिल ने दिल से। बातों बातों फिल्म का ये गीत अमित कुमार और आशा जी के स्वर में आप सभी के लिए।

जी हाँ, मीठी मीठी बातें और वो भी दिल के साथ। ना किसी ने कुछ बोला, ना किसी ने कुछ सुना, लेकिन सुनकर दिल बाग बाग हो गया। वैसे आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं अपने ही चहेते शो हमराही पर, जिसे आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर, और साथ हूँ मैं आपके रूपा धवन। तो जनाब, एक बात तो माननी ही पड़ेगी, दिल में जो बातें होती हैं ना, वो मोहब्बत में अक्सर हुस्न के साथ बयां हो जाती है। जैसे कि इस गीत के साथ हम आपको सुनवा रहे हैं ये गीत फिल्म महल से, किशोर कुमार साहब और आशा जी के स्वर में।

आंखों की, तो प्यार में सबसे खूबसूरत बातें वो हैं जो जुबान से नहीं बल्कि आंखों से की जाती है। ये बात तो हमें माननी ही पड़ेगी। अच्छा, आज बातों के सिलसिले में आप सोचिए कि आपकी ऐसी कौन सी बात है जो आज भी आपके दिल के सबसे करीब है, या वो कौन सा पुराना युगल गीत है जो आपको किसी खास इंसान की बातों की याद दिलाता है।

जी हाँ, आज हमने बात की हमराही में उन गीतों की जिनमें बातों का जिक्र था। बातों का क्या है जनाब, बातें तो अंतहीन हैं। अभी आपने बेहद ही खूबसूरत सा नगमा सुना, छोटी सी बात फिल्म से यशुदास और आशा ताई की आवाज में। जैसे कि बातें तो अंतहीन हैं, हमने बात की अच्छे गीतों और आप जैसे प्यारे हमराही साथ हों तो रातें अक्सर छोटी पड़ जाती हैं, मगर बातें खत्म नहीं होती। जैसे कि अभी समय हुआ है 3:54 और 10 सेकंड, आप हैं हमराही में रूपा धवन के साथ और वक्त का तकाजा है और अब आज के इस सफर को यहीं थामने का समय आ गया है। तो हमने युगल गीतों के जरिए दिल की बातें कही आज हमराही में, कुछ आपने सुनी कुछ मैंने कही। कल फिर ठीक इसी वक्त मिलेंगे, लेकिन जुड़े रहिए इसी तरह हमारे साथ। और कल नहीं, अभी तो आपके साथ 6 बजे तक हूँ मैं। जी हाँ, सुबह के 6 बजे तक अरुणिमा और भोर सुहानी भी आपके साथ लेकर हाजिर रहूँगी। फिलहाल अपनी बातों में मिठास रखिए, अपनों का साथ रखिए। चलते चलते छोड़ जाती हूँ आपको इस बेहद सुरीले नगमे के साथ, जिसे हमने दिया है फिल्म महल से।

0: कुछ ही पलों में आप सुनेंगे समाचार। नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अपर्णा सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की यात्रा पूरी कर स्वदेश रवाना हो गए हैं। न्यूजीलैंड से स्वदेश लौटते हुए श्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों के सामने अवसरों की अपार संभावनाएं हैं और वे अपनी साझेदारी को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए प्रतिबद्ध हैं।
1: भारत और न्यूजीलैंड के रिश्ते में यादें भी हैं, दोस्ती भी है, वैल्यूज भी है और एक कमिटमेंट भी है। भारत न्यूजीलैंड की यही वाका एक नई यात्रा पर निकलने के लिए तैयार है। हमारे सामने अवसरों से भरा खुला समुद्र है, हवाएं हमारे साथ है, समंदर की विशाल लहरें हमारे साथ है, इच्छा शक्ति का नीला आसमान हमारे साथ है, पाने को काफी कुछ है और मैं जानता हूं हम सफल होंगे।
0: पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य के लिए समान नागरिक संहिता विधेयक के मसौदे की जांच के लिए 9 सदस्यीय समिति का गठन किया है। सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई इसकी अध्यक्ष होंगी। मेघालय के पूर्व राज्यपाल तथागत राय भी समिति के सदस्यों में शामिल हैं। 2 जुलाई को मंत्रिमंडल की बैठक में समान नागरिक संहिता विधेयक के मसौदे की जांच के लिए समिति गठित करने का निर्णय लिया गया था। एक राष्ट्र एक चुनाव पर संयुक्त संसदीय समिति के अध्यक्ष सांसद पीपी चौधरी ने कहा कि लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराने से शासन व्यवस्था मजबूत होगी, खर्च कम होगा और देश की अर्थव्यवस्था को लाभ होगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने विशाखापट्टनम में स्वदेशी स्टील्थ फ्रिगेट INS महेंद्रगिरी को नौसेना के पूर्वी बेड़े में शामिल किया। परियोजना 17A का ये युद्धपोत भारत की बढ़ती समुद्री शक्ति और स्वदेशी रक्षा क्षमता का परिचायक है। इस अवसर पर श्री सिंह ने कहा कि भारत पारंपरिक रक्षा क्षमताओं और उन्नत प्रौद्योगिकियों दोनों को मजबूत करके एक मजबूत, आत्मनिर्भर और भविष्य के लिए तैयार रक्षा बल का निर्माण कर रहा है। दक्षिण की कोकिला के रूप में प्रसिद्ध दिग्गज पार्श्व गायिका एस जानकी का कल कर्नाटक के मैसूर में 88 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उन्हें 4 राष्ट्रीय

0: मृतकों में से 10 तमिलनाडु से, 3 आंध्र प्रदेश से और 2 केरल से थे। नाव में 32 भारतीय पर्यटकों, 3 चालक दल के सदस्यों और 1 परिचारक सहित कुल 36 लोग सवार थे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय नागरिकों के साथ हुई दुखद नाव दुर्घटना पर शोक व्यक्त किया है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने वियतनाम में हुई पर्यटक नौका दुर्घटना पर गहरा शोक व्यक्त किया है। साउथैम्पटन में खेले गए 5वें और अंतिम T20 मुकाबले में इंग्लैंड ने भारत को 56 रन से हराकर 5 मैचों की श्रृंखला 4-0 से अपने नाम कर ली। इंग्लैंड के जॉस बटलर को उनके शानदार प्रदर्शन के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। चेक गणराज्य की 21 वर्षीय लिंडा नोस्कोवा ने अपने ही देश की करोलिना मुचोवा को 6-2, 5-7, 6-3 से हराकर विंबलडन महिला सिंगल्स का खिताब अपने नाम कर लिया। ये उनका पहला ग्रैंड स्लैम खिताब है। मौसम विभाग ने अगले 4-5 दिनों में देश के उत्तरी और पूर्वी हिस्सों में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। इन इलाकों में जम्मू कश्मीर और लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, चंडीगढ़, अरुणाचल प्रदेश और ओडिशा शामिल हैं। इसके साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय महबश फातिमा। Prime Minister Narendra Modi has concluded his historic two-day visit to New Zealand and departed for India. The visit, the first by an Indian Prime Minister to New Zealand in over 4 decades, gave a major boost to bilateral ties. During the visit, Mr. Modi held talks with his New Zealand counterpart, Christopher Luxon. The two leaders witnessed the exchange of 5 memoranda of understanding in areas including defence, tourism, sports, disaster management and dairy and animal husbandry. A major highlight of the visit was the community event at Auckland's Spark Arena, attended by over 10,000 members of the Indian diaspora. Addressing the gathering, Mr. Modi stated that the future of India and New Zealand is intertwined and the bilateral trade agreement will accelerate India's journey towards a developed nation.
2: भारत और न्यूजीलैंड के रिश्ते में यादें भी हैं, दोस्ती भी है, वैल्यूज भी है और एक कमिटमेंट भी है। भारत न्यूजीलैंड की यही वाका एक नई यात्रा पर निकलने के लिए तैयार है। हमारे सामने अवसरों से भरा खुला समुद्र है, हवाएं हमारे साथ है, समंदर की विशाल लहरें हमारे साथ है, इच्छा शक्ति का नीला आसमान हमारे साथ है, पाने को काफी कुछ है और मैं जानता हूं हम सफल होंगे।
1: Defense Minister Rajnath Singh said that India is building a strong, self-reliant and future-ready defense force by strengthening both conventional defense capabilities and advanced technologies. Mr. Rajnath Singh said this while addressing the commissioning ceremony of the INS Mahindragiri, the 6th Project 17A indigenous stealth frigate into the Eastern Fleet at Visakhapatnam yesterday. He said the commissioning marks another milestone in strengthening India's maritime power and indigenous defence capability. Union Railways and IT Minister Ashwini Vaishnav announced plans to develop Hyderabad as a major high-speed rail hub with proposed bullet train corridors linking the city to Pune, Chennai and Bengaluru. Speaking at an industry event in Hyderabad, he said the high-speed rail network will significantly reduce travel time and strengthen connectivity among South India's major economic centres. 15 Indian tourists were killed after a boat capsized near Vietnam's Phu Quoc Island. The Embassy of India in Vietnam confirmed that the deceased include 13 men and 2 women. According to the embassy, 10 of the deceased were from Tamil Nadu, 3 from Andhra Pradesh and 2 from Kerala. The boat was carrying 36 people, including 32 Indian tourists, 3 crew members and 1 attendant. President Draupadi Murmu, Vice President C.P. Radhakrishnan and Prime Minister Narendra Modi have expressed condolence at the tragic accident. The West Bengal government has formed the 9-member committee to examine the draft bill of Uniform Civil Code for the state. A notification

कहते हैं कि आपके जीवन में अच्छी संगति और अच्छी किताबें ऐसी अनमोल संपत्ति होती हैं जो हमेशा ही आपको आगे बढ़ने में मदद करती हैं। ठीक इसी तरह हम भी आगे बढ़ रहे हैं और आपका मनोरंजन भी कर रहे हैं साथ ही साथ। वक्त हुआ है 4:11 और 24 सेकंड। आप हैं अरुणिमा कार्यक्रम में अपने ही दोस्त रूपा के साथ। बहुत प्यार भरा नमस्कार आप सभी को।

जनाब, हमारे जो मन के विचार हैं ना, वही हमारे जीवन की दिशा को बदल सकते हैं। सकारात्मक विचार हमें आगे बढ़ने में मदद करते हैं और नकारात्मक विचार हमें आगे बढ़ने से रोकते हैं। हमारे जीने का अंदाज बदल सकती है सकारात्मक सोच। अपनों को, दोस्तों को और खुद को उनकी अच्छी अच्छी छोटी छोटी सी बातों के लिए शाबाशी दीजिए। दोस्तों, डांट डपट तो सिर्फ डर पैदा करती है, लेकिन सच्ची तारीफ और हौसले से पैदा होती है हर मुश्किल को जीतने की एक नई उम्मीद। और इस उम्मीद को जगाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं हमारे दोस्त।

बातें तो अच्छी भी होती हैं और बुरी भी, और दोस्तों में भी कभी कभी ऐसी बात हो ही जाती है कि दोस्ती छोड़कर वो दुश्मनी करने लगते हैं। लेकिन ये दुश्मनी थोड़ी देर की बात होती है, जब एक दूसरे से मान मनोहार करके मना लेते हैं एक दूसरे को, तो फिर से वही दोस्ती पक्की हो जाती है। जी हाँ, और जैसे आपकी और हमारी दोस्ती अभी बनी हुई है, बरकरार है, आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर। वक्त हुआ है 4:22 और 20 सेकंड, आप हैं रूपा धवन के साथ अरुणिमा कार्यक्रम में। तो सुनते हैं एक और बेहद खूबसूरत सा गीत आप सभी के लिए, लता मंगेशकर जी और किशोर साहब के स्वर में।

गुण अवगुण सभी में होते हैं, तो दूसरों को नीचा दिखाने में नहीं बल्कि स्वयं को ऊंचा उठाने में समय लगाइए, क्योंकि समय बहुत मूल्यवान है। अंधेरे को हटाने में समय बर्बाद नहीं करिए बल्कि दीपक जलाने में समय लगाइए। अंधा कानून फिल्म का ये गीत आप सभी के लिए है।

लेकिन मेहनत वो भी दिला देती है जो किस्मत में नहीं लिखा होता। चलते चलते फिल्म का ये गीत आप सभी के लिए लता जी के स्वर में।

लफ्ज ही होते हैं इंसान का आईना, लफ्ज ही होते हैं इंसान का आईना, शक्ल का क्या है वो तो उम्र और हालात के साथ अक्सर बदल जाती है।

अभी कांच हूँ इसलिए सारी दुनिया को चुभता हूँ, अभी कांच हूँ इसलिए सारी दुनिया को चुभता हूँ, जब आईना बन जाऊंगा उस दिन पूरी दुनिया देखेगी। जी हाँ दोस्तों, वैसे तो दुनिया तभी याद करती है जब आपकी ज़रूरत होती है, लेकिन ज़रूरत नहीं, आप दूसरों की कमी बनिए। जी हाँ, जब आप कमी बनेंगे ना दूसरों की, जब आपको कमी जो है वो दूसरों को खलेगी ना, तो आपको बरबस ही याद कर लिया जाएगा। पर फिर भी हम तो यही कहेंगे कि दूसरों की भलाई में खुद को इतना खो दीजिए कि आपका नाम हर किसी शख्स की जबां पर हमेशा रहे, हमेशा आपको याद करें, और इतना याद करें कि उनकी जो आंखें हैं ना वो सोना ही भूल जाएं।

तो जनाब खुद को समय जरूर दें, आपकी पहली जरूरत खुद आप हैं, क्योंकि समय के पास भी इतना समय नहीं कि आपको दोबारा समय दे सके। और समय हुआ है फिलहाल हमारे स्टूडियो की घड़ी के अनुसार 4:54 और 22 सेकंड। आप हैं रूपा धवन के साथ, कार्यक्रम आप सुन रहे हैं अरुणिमा।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की यात्रा पूरी कर स्वदेश रवाना हो गए हैं। न्यूजीलैंड से लौटते हुए श्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों के सामने अवसरों की अपार संभावनाएं हैं और वे अपनी साझेदारी को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए प्रतिबद्ध है। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने ऐतिहासिक दो दिवसीय न्यूजीलैंड यात्रा पूरी कर भारत के लिए रवाना हो गए हैं। चार दशकों से अधिक समय बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री की यह पहली द्विपक्षीय यात्रा रही जिसने दोनों देशों के संबंधों को नई गति दी। यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी और न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के बीच व्यापक वार्ता हुई। दोनों नेताओं की मौजूदगी में रक्षा, पर्यटन, खेल, आपदा प्रबंधन तथा डेयरी एवं पशुपालन सहित पाँच महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। प्रधानमंत्री लक्सन ने भारत को न्यूजीलैंड का विश्वसनीय मित्र बताते हुए भारतीय समुदाय के योगदान और प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व की सराहना की। प्रधानमंत्री मोदी ने प्रधानमंत्री लक्सन के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि यह यात्रा भारत न्यूजीलैंड संबंधों में नए अध्याय की शुरुआत है। मंजू मीना, आकाशवाणी समाचार के लिए ऑकलैंड, न्यूजीलैंड।
0: पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य के लिए समान नागरिक संहिता विधेयक के मसौदे की जांच के लिए 9 सदस्यीय समिति का गठन किया है। सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई इसकी अध्यक्ष होंगी। मेघालय के पूर्व राज्यपाल तथागत रॉय भी समिति के सदस्यों में शामिल हैं। एक राष्ट्र एक चुनाव पर संयुक्त संसदीय समिति के अध्यक्ष सांसद पीपी चौधरी ने कहा कि लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराने से शासन व्यवस्था मजबूत होगी, खर्च कम होगा और देश की अर्थव्यवस्था को लाभ होगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने विशाखापट्टनम में स्वदेशी स्टिल्थ फ्रिगेट आईएनएस महेंद्रगिरी को नौसेना के पूर्वी बेड़े में शामिल किया। परियोजना 17 एकाई युद्धपोत भारत की बढ़ती समुद्री शक्ति और स्वदेशी रक्षा क्षमता का परिचायक है। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज दिल्ली स्थित पूसा परिसर में आयोजित पर्यावरण संरक्षण संकल्प कार्यक्रम में शामिल होंगे। इस अवसर पर वे देश भर से आए लगभग 17,000 वृक्ष मित्रों से संवाद करेंगे और जन भागीदारी के माध्यम से पर्यावरण संरक्षण को राष्ट्रव्यापी जन आंदोलन बनाने का आह्वान करेंगे। केंद्रीय मंत्री वृक्ष मित्रों के साथ पूसा परिसर में वृक्षारोपण अभियान में भी हिस्सा लेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायकों को अपने पक्ष में करने के जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के आरोप की आलोचना की है। दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में पार्टी के प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि श्री अब्दुल्ला का यह बयान अत्यंत गैर जिम्मेदाराना है और इसकी निंदा की जानी चाहिए। भाजपा नेता ने मांग की है कि श्री उमर अब्दुल्ला या तो अपने आरोपों के समर्थन में साक्ष्य प्रस्तुत करें या फिर अपने बयान के लिए सार्वजनिक रूप से माफी मांगे। भारतीय पर्यटकों को ले जा रही एक स्पीड बोट के

57 रन बनाए और भारत के सामने 258 रन का लक्ष्य रखा। इंग्लैंड के टॉस बटलर को उनके शानदार प्रदर्शन के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। उधर चेक गणराज्य की 21 वर्षीय लिंडा नोस्कोवा ने अपने ही देश की करोलिना मुचोवा को 6-2, 5-7, 6-3 से हराकर विंबलडन महिला सिंगल्स का खिताब अपने नाम कर लिया। यह उनका पहला ग्रैंड स्लैम खिताब था। इस ऐतिहासिक जीत के साथ मुचोवा विंबलडन महिला सिंगल्स खिताब जीतने वाली लगातार 4 वर्षों में तीसरी चेक खिलाड़ी बन गई है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

स्वागत है आप सभी का आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। और लीजिए जनाब, धीरे धीरे सूरज ने अपनी किरणों को साथ में सूरज के रथ पर चढ़कर सूरज आ गया है। अपनी किरणों को धीरे धीरे आसमान से धरती की तरफ बिखेरता हुआ और उसकी रोशनी से प्रकाशित होता ये सारा जहां। भोर सुहानी में आपके साथ हूं मैं, आप ही की दोस्त रूपा धवन। और जनाब, कहते हैं ना, जब इंसान चारों तरफ से थक जाता है या जब कोई उसकी तकलीफ को नहीं समझ पाता, तब यही एक विश्वास सबसे बड़ा सहारा बनता है। कौन सा विश्वास? कोई देखे या ना देखे, मेरा ईश्वर सब देख रहा है और सब जानता है। वो हमारी खामोशी भी सुनता है और हमारे बिना कहे भी हमारी प्रार्थनाएं जानता है।

जगह पर उसी का अधिकार है। और सुबह सुबह का समय भी ईश्वर का दिया हुआ एक कोरा कागज है, यानी आज का अध्याय। तो आज के अध्याय को बस अपनी मेहनत, मुस्कान और अच्छे विचारों से जैसा चाहे हम भर सकते हैं और इस जिंदगी के सफर को और भी सुहाना सफर बना सकते हैं।

जी हाँ, भोर सुहानी हो गई है। आसमान ने वो स्याह चादर समेट ली है और पूरब से सूरज की सुनहरी किरणें धीरे से आपके दरवाजे पर दस्तक दे रही हैं। सुबह का ये वक्त ये कुदरत का हमें दिया हुआ सबसे हसीन तोहफा है। वो तोहफा जब पूरी दुनिया सो रही होती है तब हवा में एक अजीब सा सुकून होता है। आज की इस नई

सुबह में बीते कल की हर चिंता को पीछे छोड़िए और एक गहरी सांस लेकर मुस्कुराइए, क्योंकि एक नया दिन एक नई उम्मीद लेकर आपके सामने खड़ा है। तो क्यों ना हम भी बस्ती बस्ती और पर्वत पर्वत पर इस बंजारे के साथ चलें। रेलवे प्लेटफार्म का ये गीत आप सभी के लिए, रफी साहब के स्वर में।

स्वागत है आप सभी का फिर से भोर सुहानी में। सुबह सुबह जब हम चाय की चुस्की लेते हैं तो अक्सर हमारे दिमाग में आज के दिन भर की भाग दौड़ का नक्शा बनने लगता है। जी हाँ, पूरे दिन भर में हमारी क्या दिनचर्या रहने वाली है, हम क्या काम करेंगे, किस समय हमें बाजार जाना है, किस समय हमें बच्चों को लेना है, किस समय हमें अपने ऑफिस में जाना है, वहाँ जाकर क्या काम करना है, पूरा का पूरा ब्यौरा। बाप रे, इतनी बातें, इतने काम कि मैं तो बोलते बोलते थक जाऊंगी। खैर, इस ब्यौरे को आप दिमाग में तो रखिए, लेकिन साथ ही साथ अपने आप को भी इस खूबसूरत सी सुबह में भाग दौड़ में शुरू करने से पहले सिर्फ अपने आप को सिर्फ और सिर्फ 2 मिनट दीजिए। जी हाँ, क्योंकि आप बेहद खास हैं। आप हैं तो हम हैं। आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर आपके साथ हैं हम, आपके दोस्त, आपके हमराही। भोर सुहानी लेकर आपके साथ हूँ रूपा धवन। तो जुड़े रहिए इसी तरह हमारे साथ और आज की भोर सुहानी सुनते रहिए गीतों से लबरेज ये कार्यक्रम। एक नई ऊर्जा, एक नया उत्साह का संचार करती आज की भोर सुहानी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सुप्रभात।